FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 ज्येष्ठ माह की तिथि एक, तदनुसार 21 मई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:59 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं, और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख ले तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित्र मानस गान, कलाकार थे बशीर अहमद। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। इसके साथ ही हमारा आज का भक्ति संगीत का समर्पण कार्यक्रम अभी समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण पर एक नज़र डालते हैं।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 6:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार होंगे आनंद मोहन पाठक। 7 होगा जोहार चाईबासा, जिसमें आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8 हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 8:30 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:40 पर होगा खोरठा लोकगीत माटी की महक के अंतर्गत, कलाकार होंगे रीता कुमारी और साथी। 9 आप सुनेंगे द्विविधा, इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट चित्रा शाह से बातचीत। 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। 10 होगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT। 10:30 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। 1:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 1:20 पर आप पुनः सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 3 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 4 पुनः आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 4:02 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। 5 मुख्य समाचार होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 5:02 पर हम आपको सुनवाएंगे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण। 5:05 पर सुनिएगा गुलदस्ता कार्यक्रम, इसमें आज आप सुनेंगे युगल गीत। 5:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम किसान वाणी, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इसमें आज चर्चा होगी लत्तेदार सब्जियों की खेती। संथाली लोकगीत होगा मतांग हांसदा और साथियों के स्वर में। आज के मेहमान के अंतर्गत भेंटवार्ता होगी बकरी पालन से लाभ। भेंटवार्ताकार होंगे गुरुचरण मुंडारी और इनसे बातें करेंगे आसमनी गो। संथाली लोकगीत का आनंद लीजिएगा सुराई मुर्मू और साथियों के स्वर में। 6 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 पर सुनिएगा बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे संथाली कार्यक्रम, जिसमें लांगड़े लोकगीत होगा धनई टुड्डू और साथियों के स्वर में। दोंग लोकगीत सुनिएगा परमिला हांसदा और साथियों के स्वर में। 6:55 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 पर सुनिए श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम कार्यक्रम आपकी पसंद। 8 आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 10 आप सुनिए गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरों के रंग। 11 हिंदी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। और 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण।

ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं आनंद मोहन पाठक।

इसके साथ ही श्रोता हमारा आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। श्रोता सुन रहे थे आनंद मोहन पाठक को। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM 101.7 MHz पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा। इस कार्यक्रम में हम आपको

0: हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आएं आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: श्रोता सुन रहे हैं जोहार झारखंड। अगला गीत है फिल्म प्रेम रतन धन पायो। गायक लकार हैं पलक मुश्चल।

अगला गीत है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, गायक लगा है लता मंगेशकर।

0: कैसा है तू? बहुत दिनों से तेरी आवाज नहीं सुनी ना, कुछ बोलना यार।
1: क्या बोलू?
0: अरे कुछ भी बोलना यार।
1: क्या और भी कोई मेरी आवाज सुन रहा है?
0: हाँ नहीं नहीं कोई नहीं है यार, मैं अकेला हूँ यार।
1: देख पल्लो, मैं तुझे सालों से जानता हूँ, बनने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही मैं किसी को अपनी आवाज सुनाना चाहता हूँ और ना ही किसी की आवाज सुनना चाहता हूँ।

अभी आपने सुना फिल्म आशिकी का ये गाना, आवाज़ें थी कुमार सानू की। और आइए सुनते हैं फिल्म राम लखन में मनहर और अनुराधा पौडवाल को।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का जोहार चायवासा कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
3: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
8: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
9: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने जो TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है समुनाथ कुर्मी।
3: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
10: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
3: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम

0: को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Repolling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: More from our correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by a series of significant events and

0: to Morning News. India has called out Pakistan's long-tainted record of genocidal acts at the United Nations Security Council. Speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathineni, said that Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said it is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India.
1: It is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
0: Mr. Parvathineni's remarks came after Pakistan's representative raised the issue of Jammu and Kashmir at the debate. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that he is looking forward to celebrating America's 250th birthday with partners in India. In a video message shared ahead of his visit, Mr. Rubio said that India is the world's largest democracy and U.S. is world's oldest. So the U.S. looks forward to celebrating it together. U.S. Embassy in India also shared the video. President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai last evening on a four-day official visit to India. In a social media post, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranadhir Jaiswal, said, President Christodoulidis' visit highlights the growing momentum of India-Cyprus partnership, and both the nations share time-tested and close relations rooted in shared values and strong people-to-people ties. The state visit comes at a moment when Cyprus holds the presidency of the Council of the European Union. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay will expand his cabinet today. Rajesh Kumar, leader of Congress Legislature Party, and P. Vishwanathan, Melur MLA, will be inducted into the cabinet. This is the first time after 1967 that the Congress members will join the state cabinet. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Mumbai Indians by 4 wickets at their home ground, Eden Gardens, last night to keep playoff hopes alive. Chasing a target of 148 runs in a rain-affected match, Kolkata Knight Riders overhauled the target with 4 wickets in hand and 7 balls to go. Manish Pandey scored highest 45 runs, while Raman Powell contributed 40 runs in the chase. In today's fixture, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already qualified for the playoffs, while Chennai Super Kings are eyeing for the fourth spot in the points table. India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heat wave conditions today at places over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also likely to prevail during the day over parts of Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Vidarbha. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
2: Thank you, Saira. Prime Minister's visit to Italy is widely noticed by the press today, along with developments in US-Iran conflict. Hindustan Times writes, Rome-Delhi dial-up ties during Modi's Italy visit. The paper also carries a picture of Prime Minister Modi and his Italian counterpart, Giorgia Meloni, at the Colosseum, and a screen grab of the video widely circulated on social media, where PM Meloni is thanking PM Modi for presenting her a bag of toffees, Melody, a play on their names. The video has been viewed over 11 million times. The Pioneer writes, PM Modi's Melody gift to his Italian counterpart sends internet into a frenzy. The Asian Age writes, after talks with Putin, Xi calls for immediate end to West Asia war. Hindustan Times headlines, talks in final lap strikes if no deal, says Trump. Iran says conflict will expand beyond region if US resumes attacks. Financial Express headlines, RBI lines up $5 billion swap to aid liquidity. In the growing market of cosmetics, Central Drug Standard Control Organization has issued an advisory saying cosmetics can only be rubbed, sprayed or sprinkled on body. The newspaper headlines, No Cosmetic Job with Jabs, warns drug regulator. The Indian Express, in an exclusive, writes, Working in my own grave, how workers are training robots that may replace them. The news item writes about workers in factories who are asked to wear smart glasses throughout their day. The exercise reflects a growing global push by AI and robotics companies to gather what's called egocentric data, first-person recordings of human activity that can teach machines how people perform physical tasks. And finally, The Economic Times writes, Google rejigs iconic search box for AI era, adding Google is redesigning its iconic search box and adding new artificial intelligence coding tools in its first step to expand influence in the age of AI. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falter Assembly constituency of West Bengal. And tonight will cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And with that, we end the morning news. Have a great day.
3: Akashwani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। रांची पुलिस मुख्यालय में आज माओवादियों का एक बड़ा समूह करेगा आत्मसमर्पण। राज्य सरकार का सड़क निर्माण में देरी पर सख्त रुख। ग्रामीण विकास मंत्री ने दिए रेट रिवीजन, खेल की जांच और लापरवाह ठेकेदारों को डिबार करने के आदेश। राज्य सरकार और एक्सएलआरआई जमशेदपुर के बीच राज्य में स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए एमओयू। नए उद्यमियों को मिलेगी सीड फंडिंग और विश्व स्तरीय मेंटरशिप। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। पलामू में पारा 43.4 डिग्री के पार। आज रांची समेत कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज शाम जमशेदपुर एफसी और ओडिशा एफसी के बीच जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा खिताबी जंग का अंतिम लीग मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में उग्रवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। कोल्हान के सारंडा जंगलों में सक्रिय नक्सलियों के एक बड़े समूह ने हथियार डाल दिए हैं। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
4: झारखंड के नक्सल इतिहास में आज सबसे बड़ा सरेंडर होने जा रहा है। शीर्ष नक्सली कमांडर मिसिर बेसरा के दस्ते से जुड़े नक्सलियों के एक बड़े समूह ने सुरक्षा बलों के सामने घने जंगलों में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रांची लाया गया है। आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े इनामी और महिला नक्सली भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने साथ भारी मात्रा में आधुनिक हथियार भी पुलिस को सौंपे हैं। आज सुबह रांची पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इनका विधिवत आत्मसमर्पण कराया जाएगा। इस सामूहिक सरेंडर से सारंडा इलाके में सक्रिय नक्सल संगठन की कमर पूरी तरह टूट गई है, जिससे राज्य में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
3: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सड़क निर्माण में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने लापरवाह ठेकेदारों को डिबार करने और रेट रिवीजन के लिए जानबूझकर काम लटकाने वालों के जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने गुणवत्ता से समझौता न करने और विधायकों के शिकायतों पर तुरंत जमीनी कार्रवाई का निर्देश दिया।
5: ग्रामीण विकास में मेनली जिन चीजों की समीक्षा की गई वो मनरेगा संबंधित, अब वो आवास को लेकर के है, आवास की अन्य योजनाएं जो केंद्र के द्वारा सपोर्टेड है, जेएसएलपीएस की गतिविधियां और वाटरशेड को लेकर के यहां पर विस्तार से चर्चा हुई है। और इन सभी कामों में हम लोगों ने प्राथमिकता इस बात को देने को कहा है कि जो हमारे ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
3: रांची में आज और कल कुलपति सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस दो दिवसीय सम्मेलन में राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन आज राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार करेंगे, जबकि कल समापन सत्र में उच्च एवं

0: तकनीकी शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। रांची में आयोजित सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि कंपनियां सीएसआर राशि का उपयोग फैक्ट्री और माइंस प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए करें। उन्होंने इसकी निगरानी के लिए एक विशेष सेल बनाने की भी घोषणा की।
1: जो सीएसआर का पैसा दूसरे जगह यूज करता है, गर्दा हम खाते हैं, संकट हम झेलते हैं, जमीन हमारी जाता है और इसका नियंत्रण जो है कोई और करता है और इस पैसा को दूसरे देश में, दूसरे राज्य में खर्चा किया जाता है। लेकिन हमको राज्य के हित में भी देखना है और उसको कैसे बेहतर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अधिक से अधिक पैसा कैसे हम उस इलाके में खर्चा कर सकते हैं जहाँ फैक्ट्रीज है, जहाँ उद्योग है, तो उसके लिए हम लोगों ने आज जो है पहला मीटिंग किए हैं।
0: बैठक में यूनिसेफ, टाटा फाउंडेशन और सीसीएल के प्रतिनिधि शामिल हुए। राज्य सरकार और एक्सएलआरआई जमशेदपुर के बीच राज्य में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना तथा वन आधारित और सर्कुलर इकोनॉमी के अवसरों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने बताया कि यह पहल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की सोच के अनुरूप है। इस अवसर पर प्रधान सचिव अबू बकर सिद्दीकी और GIIDCO के प्रबंध निदेशक वरुण रंजन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आज रांची में मीडिया कर्मियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से आगामी 23 मई को सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड इलेक्टर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सुबह 10 से शाम 5 बजे तक अपने बूथ पर जाकर नाम की जाँच कर सकेंगे। उधर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और जिला प्रशासन के सहयोग से जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में एक विशेष मतदाता और आधार कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। चैम्बर अध्यक्ष मानव केडिया ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कैंप का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों और आम लोगों को चुनावी व पहचान दस्तावेजों से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना था।
2: SIR का मैपिंग हो रहा है, वोटर आईडी और आधार जो है नए जिसको बनाना है नए बन रहे हैं, अगर कुछ करेक्शंस है तो करेक्शंस हो रहे हैं। 2 साल बाद आज हम लोग ने ये कैंप लगाया है और हमारे मेंबर्स की और लोगों की डिमांड थी कि वोटर आईडी का करेक्शन कराना है, आधार में बहुत से करेक्शंस है और खासकर मैपिंग जो है वो बहुत जरूरी है। जो पहले किसी कंस्टिट्यूएंसी में थे अभी चेंज हो गया है उनका कंस्टिट्यूएंसी, तो अभी SIR मैपिंग कराना मस्ट हो गया है।
0: सीबीआई की धनबाद टीम ने GCST के गिरिडीह कार्यालय में 15 घंटे लंबी छापेमारी की है। टीम ने इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले को सुलझाने के एवज में रिश्वत लेते सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए धनबाद ले जाया गया है। हजारीबाग पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित टीपीसी उग्रवादी दुर्गा बेदिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि 9 मामलों में फरार चल रहे इस उग्रवादी को गिद्दी थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में कोर्रा थाना क्षेत्र के एक होटल में छापेमारी कर अवैध देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए संचालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जहां कल

पलामू 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। रांची समेत 16 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार आज 5 जिलों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा और गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज जमशेदपुर एफसी जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओडिशा एफसी के खिलाफ अपना अंतिम लीग मुकाबला खेलेगी। लीग टाइटल की दौड़ में बने रहने के लिए जमशेदपुर एफसी को यह मैच हर हाल में जीतना होगा। टीम फिलहाल 12 मैचों में 21 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। यह मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रांची एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं के उद्घाटन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के हवाले से लिखा है, राज्य में 4-5 एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आज सबसे बड़ा सरेंडर, 25 नक्सली डालेंगे हथियार। हिंदुस्तान के शब्द हैं, झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में। दैनिक जागरण लिखता है, 7 ट्रेनों में स्थायी रूप से बढ़ेंगे 20 अतिरिक्त कोच, 2 और कतार में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। रांची पुलिस मुख्यालय में आज माओवादियों का एक बड़ा समूह करेगा आत्मसमर्पण। राज्य सरकार का सड़क निर्माण में देरी पर सख्त रुख। ग्रामीण विकास मंत्री ने दिए रेट रिवीजन, खेल की जांच और लापरवाह ठेकेदारों को डिबार करने के आदेश। राज्य सरकार और एक्सएलआरआई जमशेदपुर के बीच राज्य में स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए एमओयू। नए उद्यमियों को मिलेगी सीड फंडिंग और विश्व स्तरीय मेंटरशिप। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। पलामू में पारा 43.4 डिग्री के पार। आज रांची समेत कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज शाम जमशेदपुर एफसी और ओडिशा एफसी के बीच जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा खिताबी जंग का अंतिम लीग मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे खोरठा लोकगीत। कलाकार हैं रीता कुमारी और साथी।

0: इसके साथ ही शायद हमारा आज का माटी की महक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और आइए सुनते हैं विविधा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं योग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट चित्रा शाह से बातचीत।
1: नमस्कार
2: नमस्कार।
1: मैं चाहूंगी पहले आप अपना
2: परिचय
1: खुद दें।
2: बिल्कुल, मेरा नाम चित्रा साहा है। एक्चुअली मैं झारखंड के ही, बेसिकली मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। और मेरा एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हूँ, और मैंने 14 इयर्स जॉब करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ स्पोर्ट्स में अपने आप को एक्सप्लोर करना है। और तभी एक्चुअली मैंने योगा में फर्स्ट जो मेरा इंटर हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड मैंने वेस्ट सिंहभूम के तरफ से मैंने अपने आप को एनरोल कराया, और तब से मैं योग कर रही हूँ। और अभी यही मेरा नया परिचय है कि मैं योगा के एथलीट हूँ, और मैं बहुत सारे फेडरेशन से खेलती हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन फेडरेशन, इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स ऑफ फेडरेशन, ABYSF। तो एक्चुअली रियली मैं बहुत अपने आप को प्रिविलेज एंड फॉर्चुनेट फील करती हूँ, क्योंकि योगा मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस लाए और मुझे एक नया परिचय दिया, आप सभी से जुड़ने का मुझे मौका मिला। और इससे जो अपना हेल्थ बेनिफिट, जो बहुत सारे चीजों से लोग डेली जो जूझते हैं अपने जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से, मेरा भी जो भी था वो भी एक्चुअली में उससे ओवरकम भी हुए, और मुझे बहुत ऑनर मिला। दैट्स मी एक्चुअली।
1: तो ये योगा से आप कब से जुड़े हैं?
2: योगा से मैंने डेडिकेटेडली मैंने जुड़ा 2023, और इससे पहले मैं योग करती थी, बट मैं कंपटीशन के फील्ड में जो आई, क्योंकि मैंने 23 में ही अपने जॉब से मैंने ब्रेक लिए, और मैं कंटिन्यूटी और एक रेगुलरिटी मेंटेन कर पाए, उसके पहले मैं योग करती थी ओनली हेल्थ के लिए, मतलब एक जो फिटनेस के लिए, हेल्थ फिटनेस एंड वेलनेस। लेकिन एक कंपटीशन और एक जो अपने आप को एक नया प्लेटफॉर्म में एस्टेब्लिश करने का जो एक मेरा जुनून आया, वो 2023 में फर्स्ट मेरा योगा का कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद हुआ।
1: तो फर्स्ट के बाद ही रेगुलरली, हाँ, फर्स्ट आपने 2023 में पार्टिसिपेट किया है?
2: यस यस यस, उनके तरफ से।
1: कौन सा कंपटीशन था
2: ये? आपका स्टेट था, स्टेट लेवल का कंपटीशन था, जो रूसा में हुआ, वेस्ट सिंहभूम में चाईबासा में हुआ, योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया।
1: इसमें आपने किस तरह का अनुभव किया? फर्स्ट आपने भाग लिया इस तरह का कंपटीशन में?
2: बहुत ही मेरा अच्छा अनुभव रहा कि एक योगा में इतने सारे, जो मैं अपने एज ग्रुप के जब मैंने कैंडिडेट को देखे, हमारा जो एज ग्रुप था उसमें सभी ने अपना हेल्थ, अपना परिवार को मेंटेन करते हुए, जब उन्होंने ये एक कंपटीशन का जो एक मेंटालिटी है उसमें उन्होंने जब खेल रहे हैं, तो उसमें भी एक बहुत टफ कंपटीशन था, सबने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, और उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैंने अपना बेस्ट दिया, सबने अपना अपना बेस्ट दिया, और उसी से जो है मुझे बहुत सारे चीज सीखने को मिला कि कहाँ पे परफेक्शन करना है, कहाँ की पॉइंट्स है, कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ पे मैं और इम्प्रूवमेंट करके मैं अपना पोजीशन को होल्ड कर सकती हूँ। तो ये बहुत सारे चीजें था जो मेरे लिए एक सीखने का बहुत अच्छा मौका था, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। मैं ये बोलूंगी कि वो कंपटीशन नहीं, मेरा एक बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म था, और उसको आगे बढ़ाने का जो एक मन के अंदर जुनून वहीं से पैदा हुआ।
1: तो अभी आपने हाल ही में नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है ना?
2: राइट राइट मैम।
1: तो ये कौन सा कंपटीशन था नेशनल लेवल का?
2: ये था योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया का ही नेशनल था जो हमारा मैसूर में हुआ, कर्नाटक का मैसूर में। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 5000 से अबव ऑल पार्टिसिपेंट्स हर एक एज कैटेगरी के सीनियर ग्रुप के, जिसमें मेरे ही एज ग्रुप में ऑलमोस्ट 55 अबव कॉम्पिटिटर थे और सारे जो स्टेट के थे, ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट के ओनली फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन होल्डर ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वहाँ पे मेरा मतलब ब्रॉन्ज मेडल आया बिहाफ ऑफ झारखंड। तो मुझे बहुत और भी उसने अपने आप को पॉलिशिंग करना है, बट दैट वॉज वेरी वेरी ऑनरेबल फॉर मी बिकॉज ये फर्स्ट टाइम ही मेरे एक ग्रुप का ये ब्रॉन्ज मेडल आया।
1: चलिए बधाई है उसके लिए आपको, बहुत बहुत बधाई।
2: थैंक यू धन्यवाद मैम आपको भी, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ करके, आप लोगों से बात करके।
1: तो ये जो आपने पार्टिसिपेट किया था किस एज ग्रुप के लिए?
2: ये था मैम 35 to 45 वुमेन ट्रेडिशनल।
1: वहाँ पर आपका अनुभव कैसा रहा?
2: यहाँ पे बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही मैं उम्दा अनुभव रहा कि आप एक मतलब हर बीच में आपको सीखने का है। आप जब जब किसी को देख रहे हैं कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो, जब कहाँ पे मतलब जो कंपटीशन का फॉर्मेट है कि आपको कितने सेकंड होल्ड करना है, होल्ड करते समय आपका अपीयरेंस कैसे होगा, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे एक आसन में आने के बाद आपका जो फेशियल इम्प्रेशन है वो कैसा होना है, तो ये सारे चीज मतलब आप जब मैंने जब स्टेज से मतलब उठने से पहले और स्टेज में उठने के बाद, उसके बाद स्टेज से उतरने के बाद तक का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही कमाल का था, क्योंकि आपका हर एक बीच में आपका पॉइंट है। आप कैसे अपने आप को स्टेज में आप कितना कॉन्फिडेंटली उठे, कैसे आप आसन में आए, आपका माउंटिंग से डिसमाउंटिंग तक आप कैसे आसन में आए, आसन में आने के बाद होल्ड करने में आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आप बहुत पेनफुली उसको रख रहे हैं या बहुत स्माइल के साथ बहुत फ्रीली आप रख रहे हैं, तो ये सारे चीज मैटर करता है। एंड लास्ट में आप कैसे कॉन्फिडेंटली आप करते हैं, तो ये सारे में आपका पॉइंट होता है। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा माहौल था, सारे बहुत पॉजिटिव वाइब्स थे, तो इट वाज रियली वंडरफुल एंड अमेजिंग।
1: ये तो आपका नेशनल लेवल का कंपटीशन था, ये फर्स्ट था या पहले भी आप पार्टिसिपेट कर चुके?
2: मैं ये मेरा इस फेडरेशन में मेरे ये थर्ड नेशनल था, इस फेडरेशन में मतलब फेडरेशन ऑफ इंडिया में ये मेरा थर्ड है जी। मैंने और एक और भी नेशनल खेले हैं, उसमें भी मेरा किसी में गोल्ड है किसी में सिल्वर है, तो सारे में मेरा उसमें पोजीशन है, सारे में मेरा अचीवमेंट है, लेकिन ये फेडरेशन ऑफ इंडिया में ये मेरा थर्ड टाइम नेशनल था। मेरा मैंने जब फर्स्ट टाइम नेशनल खेला उसमें मेरा सिक्स पोजीशन था, सेकेंड टाइम जब नेशनल खेले उसमें फिफ्थ पोजीशन था, और थर्ड टाइम ये मेरा ब्रॉन्ज था।
1: इसके लिए आपने तैयारी कैसे की?
2: एक जो फर्स्ट जो तैयारी के लिए मैम लगता है कि आपका खुद का खुद से कमिटमेंट और कम्पिटिटर आप खुद है, कम्पिटिटर और कोई नहीं है। आपको परफेक्शन लाना है तो आपको अपने आप में डेडिकेशन के साथ परसिवियरेंस के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू नो क्लोजर टू द परफेक्शन। तो यही मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रहा कि मैं परफेक्ट करूं, और बाकी सारे चीज जो फॉर्मेट के मतलब अकॉर्डिंग आपको मिलता है, फॉर्मेट तो मिलता है कैसे क्या की पॉइंट है, कैसे क्या करना है। बाकी बहुत सारे ट्यूटोरियल है और कुछ मेरे ऑनलाइन में भी कभी कुछ जरूरत होता है कैसे क्या, और फ्लेक्सिबल लाने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। मेरे सर भी जो है हम जुड़ते हैं, जैसे साईबाबा में मेरे सर थे दीपक पासवान सर, तो उनसे भी मैं बातें करती हूँ, क्योंकि मैं रहती हूँ दुर्गापुर में, मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। तो क्योंकि मैं पहले चाईबासा में ही रहती थी, अभी ड्यू टू जॉब यू नो पर्पस तो मैंने आई शिफ्टेड इन दुर्गापुर। तो अभी बहुत सारी चीजें जो मुझे थोड़ा और यू नो कुछ जानना होता है, कुछ और मुझे सीखना होता है, तो मैं बहुत सारे भी कॉन्टेक्ट में रहती हूँ। बाकी आपका सीखने के लिए और जानने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी आपको ऑनलाइन में भी मिलेंगे। बट डेफिनेटली आप जब कोई भी और जैसे कोई एडवांस चीजों में जाएंगे तो गाइडेंस बहुत जरूरी होता है, तो वो मैं लेती हूँ और अपने आप में ही उसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ।
1: तो अभी जब नेशनल लेवल के लिए आपका सिलेक्शन हुआ तो तब का एक कोच रहे होंगे, एक जगह आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा?
2: एक्चुअली मैम हम तो मतलब हमारे जो झारखंड की तरफ से जो था, झारखंड के तरफ से ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और भी जितने हजारीबाग ये सब से रांची ये सब से हम लोग जाकर के हम लोग मैसूर नहीं मिले, क्योंकि सब तो अलग अलग जगह से चुन के आते हैं ना, सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली हम लोग अपना प्रैक्टिस तो अपने अपने सब जगह पे करते हैं।
1: अच्छा, फिर हम लोग
2: फिर जब हम लोग पहुँचते हैं मतलब जहाँ पे हम लोग का वेन्यू है, जैसे इस बार मैसूर में था, तो वहाँ पे हम लोग फिर से अपना एक बार प्रैक्टिस को दोहराते हैं, जिसमें बहुत सारे और भी चीजें जिसका सारे एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जिसमें सभी एक दूसरे से जो है सारे चीजों को एक बार फिर से वेरीफाई हो जाता है, सारे की पॉइंट्स को। तो वहाँ पे कोच रहते हैं, वहाँ पे सारे कोच हेल्प करते हैं। तो इस बार जो हम लोगों के झारखंड तरफ से जो कोच गए थे वो थे सपन कुमार साव।
1: तो ये योगा करने के लिए है ना,
2: योगा
1: कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, खुद के लिए तो करते ही है योगा। तो मैं जानना चाहूंगी इसके लिए खान पान किस तरह का रखना चाहिए,
2: जी मैम। जी खान पान बहुत जरूरी है एक्चुअली। ऐसे तो देखिए आप नॉर्मल खाना लोग जो है मतलब हम लोग ले सकते हैं, सिर्फ जो मुझे मतलब चाहिए एक अच्छा हेल्थ के लिए, क्योंकि योगा ओनली ऐसा नहीं है कि खाली कंपटीशन ही योगा है, योगा अपना जो है अपने हेल्थ को अच्छा रखने के

0: आपका जैसे वार्म अप हो गया तो कोई भी आसन में जाने से आपका बॉडी खिंचाएगा नहीं और इससे हेल्प होगा, बहुत इजीली आपको इजीली आप उस आसन में जा सकते हैं। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बॉडी और खुलेगा, ओपन अप होगा।
1: तो आपको योगा करते हुए इस तरह का कंपटीशन में अभी 2023 से आती है?
0: जी जी, मैंने 2023 के कंपटीशन कंपटीशन में
1: दो साल नहीं हुआ है, लेकिन योगा आपने कब से शुरू किया?
0: एक्चुअली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एक मतलब मैं बहुत इतना कम टाइम में मैंने नेशनल मेडल होल्डर मैंने क्या अचीव करने के लिए मैं यही बोलूंगी कि एक तो सबसे पहले मैं अपना जो है अलमाइटी को, भगवान जी को, उन्होंने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मेरे अंदर दिए है, मैक्सिमम दे के ही शायद भेजे थे, ये मेरा बिलीफ है। और दूसरा है कि उसके बाद 2023 में मैंने जब स्टार्ट किया मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, मतलब एक ऐसा ऐसा भी है कि एक एक दिन मैं 8-8 घंटा प्रैक्टिस करती थी, अभी भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और हाँ, अभी ऐसा है कि एटलीस्ट आप दो घंटा करके रोज प्रैक्टिस कीजिए तो भी आप बहुत इम्प्रूव करेंगे, लेकिन मैं अपने आप के ऊपर 6 घंटा 7 घंटा 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा जैसे जिस दिन था वैसे ही मतलब मैं अपने आप को मोल्ड करती थी। तो शायद इसलिए मैं इतनी जल्दी ये प्लेटफॉर्म में पहुंच करके मैं अपना जो है एक नाम मतलब ओनर, ये मैंने ब्लेस, ये मेरा ब्लेसिंग है, ये मैंने क्या बोले, ये मैंने अचीव कर पाए।
1: देखिए ये योगासन बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे आसन हैं, कोई ऐसा आसन होगा चित्रा जी जो कि आपको बहुत ही पसंद होगा?
0: फर्स्ट मेरा ट्विस्टिंग, देन फॉरवर्ड बेंडिंग, देन आपका लेग बैलेंस।
1: मैं चाहूंगी अंत में आप संदेश के तौर पे कुछ कहें।
0: मैम मैं यही बोलूंगी कि योगा हमारे जीवन में सिर्फ एक हेल्थ को ठीक करने के लिए नहीं, मैं बोलूंगी कि ये हमारे जीवन में बहुत बहुत ही एक ब्लेसिंग है योगा। ये सिर्फ हमारे हेल्थ को नहीं बल्कि हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा यू नो मतलब एक देखने का नजरिया को भी चेंज कर देते हैं। जब आप कोई भी चीज को करेंगे एक डेडिकेशन के साथ और आप उसमें उसके लिए आपको पहले अपने आप को कितना पॉलिश करना होता है जब आप उस जगह पे पहुँचते हैं, जब आप कोई भी चीजें अगर हमारे जीवन में कोई सपोज कोई भी एक चीज से हम लोग जूझ रहे होते हैं और जब उससे हम बाहर निकलने का बहुत सारे रास्ते ढूंढते हैं तो लोग बहुत भटक जाते हैं, लेकिन योगा ऐसा चीज है कि योगा अगर हम लोग अपनाते हैं तो न सिर्फ हमारे हेल्थ को बल्कि हमारा देखने का नजरिया, हमारा बोलने का तरीका और एक हमारा स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य तो हमारा सबसे ऊपर है, टॉप प्रायोरिटी में होता है, बिकॉज उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हर चीज आपका पॉजिटिव वाइब, आपके अंदर ही पॉजिटिव वाइब भर देगा, आपको पॉजिटिव बना देगा, आपको ऑप्टिमिस्ट बना देगा। जब आप अपने आप के ऊपर काम करते करते उस चीज को आप जीत लेते हैं तो आपका अंदर कॉन्फिडेंस भी भर देता है, जो आपको कितना सारे मेडिसिन लोग और भी कहाँ कहाँ लोग भटक जाते हैं, कितना मंत्र तंत्र ये वो। तो मैं बोलूंगी कि योगा हर एक लेवल, एक कम ज्यादा बड़ा छोटा कुछ नहीं, हर किसी को योगा करना चाहिए। आप इतना ही सही सोच करके कि कुछ नहीं, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, हम तो एटलीस्ट मेडिसिन से हम बचे रहेंगे और लाइफ में जितना भी दिन जिएंगे खुशी से जिएंगे, जो हमारा मन है उसको हम टेस्ट कर पाएंगे। तो एक मैं बोलूंगी योगा ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको हर चीजों से खुशी दे सकती है और आप दूसरों को खुशी देने के लिए वो मेंटालिटी भी बनाता है, दैट्स कॉल्ड योगा। मैं एक लाइन में अगर बोलूं, दैट इज कॉल्ड योगा। सिर्फ एक आत्मा और परमात्मा के मिलन के बीच में ये जो जर्नी है, आप इस जर्नी को टेस्ट कर सकते हैं, दैट्स योगा।

0: me, and yes, yes.
1: तो किस तरह से आपसे बातें हुई, आपकी अनुभवों को आपने साझा किया हमें, हमें उम्मीद है कि हमारे कार्यक्रम को जो सुन रहे हैं उन्हें भी जरूर ही लाभ होगा, ऐसी उम्मीद के साथ आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और जो भी आपने अचीव किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। इसी के साथ आपको फिर से धन्यवाद, नमस्कार।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
4: परिवार जो इन बेटा क्रांति बेसरा आले नागे नेहर में बोले नुकान परिस्थिति रे बोले सब ओडा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे आम बोले रुड़ तब में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
5: मोर नाम मंगलोरा एको गांव बड़गड़ा आड़की थाना। तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कुल को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
6: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे भक्तो तो कहाँ तब घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
7: नितम बुरा मिसिंग काम सोए अनिता काम सोए भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में नहीं है यापा मैं रियल तपा मैं रियल वाह बेटा मिका
8: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा उरो पटन पटन तुम कितना ही कोड़ा मुनि में उड़ी ने बागिया तो किन्हें दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे दुरुगम कोई यहाँ तबो जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
9: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लेंगे सी जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरेन का अली आया न तुम ते ना मिल आप ही लेते ना।
3: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
10: इसके साथ ही श्रोता हमारा आज का विविधा कार्यक्रम अभी समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन।

कार्यक्रम रसरंजन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहला गाना है फिल्म मोहरा से, गायक कलाकार है पंकज उदास और साधना सरगम।

अभी आपने सुना फिल्म लूट मार का ये गाना, आवाज़ें थी आशा भोसले की। और आइए सुनते हैं फिल्म कसूर में अलका याग्निक और उदित नारायण को।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का रसरंजन कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
1: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग NCERT सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग NCERT के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
1: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: NCERT के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
1: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
1: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
1: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
1: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका

0: कहां से कहां तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
0: जी
1: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
0: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
1: जी शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
0: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
0: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
0: जी
1: यही वो अनोखी जगह है जहाँ विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
0: जी
1: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
0: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरिंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन, यानी शोला फॉरेस्ट।
1: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊंचे नहीं होते।
0: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओं, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं।
0: जी
1: कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
1: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उसी जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो। आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ। जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो।

0: कान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
0: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा। है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती। है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश, छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। पंख फैला कर नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
2: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर
1: अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों

0: जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़, इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काटो।
7: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
4: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
8: रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
5: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
6: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
4: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
6: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
5: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
4: वो उसे काटने लगे।
7: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
5: अच्छा ठीक है
6: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
4: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
8: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
6: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
4: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
9: अरे वाह अटकू मटकू,
4: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
5: पेड़ हमारे
6: दोस्त हैं।
5: जीवन में हरियाली लाओ,
6: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
2: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार,
10: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग।

0: जहाँ रांची कार्यक्रम के साथ हम दोनों हाजिर हैं। हम दोनों यानी कि मैं विनीता और मेरे साथ हैं
1: रेणु।
0: आप सबको हमारा
1: जोहार
0: नमस्कार। और रेणु जी आपको भी हमारा जोहार और नमस्कार।
1: जोहार विनीता, जोहार।
0: कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हैं।
0: ना ना, ठीक तो नहीं होंगी इस गर्मी में क्योंकि बुरा हाल कर रखा है इस मौसम ने, है ना?
1: उतार चढ़ाव काफी हो रहा है, फिर भी
0: ठीक है
1: और अपेक्षा ठीक है।
0: ठीक है, हाँ हाँ। तो हमारी बातें शुरू हो और ढेरों जानकारी हम अपने श्रोताओं से साझा करें, उससे पहले क्यों ना एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: हाँ हाँ।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: जोहार रांची कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है आप सबों का। मैं हूँ विनीता और मेरे साथ है आज रेनू। तो अब वक्त है सुविचार का, है ना रेनू जी?
7: हाँ जी।
6: तो कहते हैं ना, मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए, है ना?
7: बिल्कुल सही कह रही है विनीता, क्योंकि कहते हैं ना कि ना पत्थर जब पानी में डूबता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है।
6: सही में।
7: और ठीक वैसे ही जैसे घमंड खुद को ही बर्बाद कर देता है, इसलिए घमंड किसी बात का भी नहीं करना चाहिए और मन को सोच कर सुंदर रखना चाहिए।
6: बिल्कुल। और घमंड किस बात का? आज मेरा है तो कल सामने वाले का होगा, है ना? तो इसलिए घमंड बिल्कुल भी ना करे और मन पे कोई बोझ ही ना रखे कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं या सामने वाला हमारे साथ क्या कर रहा है। बस मन को साफ रखे।
7: बस

0: तो विनीता, अब चलते हैं मौसम की ओर।
1: बिल्कुल, क्योंकि उसका हाल बताए बिना हम लोगों के प्रोग्राम बढ़ ही नहीं सकता है। तो
0: इन दिनों तो झारखंड में भाई भीषण गर्मी की चपेट में आ गया
1: आ चुका है, और हमें लग रहा था कि इस साल शायद थोड़ी राहत रहेगी, पर 2-3 दिनों से तो बहुत ही भयानक गर्मी पड़ रही है। और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि कल झारखंड में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, पर कुछ जगहों पे शायद हुई है, पर आज से तो फिर से वापस से वही मौसम है है ना।
0: और इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, वज्रपात और बारिश की संभावना जताई गई है। और वहीं रांची सहित कई जिलों में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के भी आसार बताया जा रहा है।
1: हाँ, लेकिन मौसम विभाग ने ये भी बताया कि 21 मई यानी कि आज से फिर से लू चलने की संभावना है, और यानी कि झारखंड भी भीषण गर्मी की चपेट में पूरी तरीके से आ चुका है।
0: ये झारखंड ही नहीं विनीता, ये बिहार और यूपी समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण लू की चपेट में है। और बुधवार को तो उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री तापमान था और सबसे गर्म स्थान रहा। और इधर शहरों में छिटपुट बारिश और बारिश हुई, हालांकि इस बारिश ने कुछ जिलों में उमस बढ़ा दी, हल्की बारिश होने से ना और दिक्कत हो जाती है।
1: तो कहने का मतलब यही कि जिस तरह से मौसम का उतार चढ़ाव चल रहा है, हमें अपना ख्याल रखना है ना। और ख्याल कैसे रखना है ये तो हम हमेशा ही अपने प्रोग्राम में अपने श्रोताओं को बताते हैं, लेकिन जैसा कि अभी का मौसम है यानी कि अचानक से कड़ी धूप और तुरंत बारिश, तो कुछ ज्यादा ही ख्याल रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का।
0: जब भी घर से निकले तो भाई अपने साथ क्या मोटे तौलिए, गमछी लपेट कर सिर में बांध के लपेटिए, या फिर छाता ले लीजिए,
1: और पानी की बोतल हमेशा साथ रखे।
0: पानी के साथ साथ सत्तू का घोल या छाछ, उस तरह के पेय पदार्थ हो उसको आप बोतल में रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, और ऐसे भी इस मौसम में काफी अच्छे फल मिलते हैं, तो आप उन सबको जरूर खाएं, डेली अपने रूटीन में जरूर शामिल करें, ताकि कुछ तो ठंडक मिल सके। तो इस मौसम में अपना ख्याल रखें, क्योंकि अभी भी पारा ऊपर जाने का संदेह है। तो आप ख्याल रखें अपना, क्योंकि अभी पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है, तो आप खुद ही सोचिए कितनी गर्मी है। बाहर से आने के बाद तुरंत एसी में ना बैठे, पंखे के नीचे ना जाए, या पानी ठंडा ना पिए,
0: और या फिर एसी से निकलने के बाद भी
1: हाँ, यही बिल्कुल बिल्कुल तुरंत धूप में ना जाए। यही सब कारण है जो आपको बीमार कर सकता है।
0: सावधानी बरतते रहें और अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, और फिर मनोरंजन के लिए गीत संगीत है ही।
1: बिल्कुल।

0: जो है रांची कार्यक्रम में अब कुछ बातें आज के इतिहास की करते हैं। तो आपको बताएं कि आज ही के दिन यानी कि 21 मई को 1840 में न्यूजीलैंड को एक ब्रिटिश उपनिवेश घोषित किया गया था और 1851 में दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में गुलामी प्रथा समाप्त हुई थी। वहीं 1881 में आज ही के दिन यूएस नेशन लॉन टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी।
1: और आज ही के दिन 1881 ईस्वी में क्लास बार्डन ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना की थी। और 1908 ईस्वी में आज ही के दिन पहली हॉरर फिल्म
0: शिकागो में दिखाया गया था।
1: अच्छा,
0: तो आप सोचिए 1908 में हॉरर फिल्म की शुरुआत हुई थी।
1: और 1904 ईस्वी में पेरिस में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा की स्थापना हुई थी। और 1918 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने महिलाओं को मतदान की अनुमति दी थी।
0: और 1970 में आज ही के दिन यूएसएसआर ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। 1996 में आज ही के दिन पेप्सी ने विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में विज्ञापन बनने की घोषणा की।
1: और 1994 ईस्वी में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था।

0: और जोहार रांची में उनकी बातें जिनका है आज जन्मदिन। तो आपको बताते हैं कि 21 मई 1931 ईस्वी में भारत के प्रसिद्ध व्यंग रचनाकार शरद जोशी का जन्म हुआ था।
1: और 1960 में आज ही के दिन भारतीय अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथ नायर का भी जन्म हुआ था। तो चलिए इससे कि पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, एक और गीत सुनते हैं।

0: और बातें हो रही आज के दिन की, तो हम ये भी बताएं आपको कि आज राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में हर साल मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है।
1: वे भारत के छठे प्रधानमंत्री थे जिनकी 21 मई 1991 को मद्रास के पास के गांव में हत्या कर दी गई थी। भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस की स्थापना राजीव गांधी की याद में की थी।

0: और दिवस की बातें हो रही हैं रेणु जी, तो हम अपने श्रोताओं को ये भी बताएंगे कि आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस,
1: हाँ।
0: जो कि हर साल 21 मई को मनाया जाता है, यानी कि चाय लवर के लिए ये खास दिन है,
1: हाँ, ना? तो आज दुनिया भर में जो है चाय के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को उजागर करना और चाय उत्पादक किसानों की आजीविका और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देना है।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: वैसे
1: तो है।
0: बिल्कुल, लेकिन मुझे तो लगता है इसके महत्व के बारे में हम ना भी बताएं तो लोगों को पता है, क्योंकि इसके बिना रहना तो बहुत मुश्किल है। और ये भी बताएं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 2019 में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी कि इसे आज ही के दिन यानी कि 21 मई को हम मनाएंगे।
1: और पानी के बाद दुनिया भर में सब

0: सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पेय है, तो हर दुनिया भर में 2 अरब से अधिक कप चाय पी जाती है।
1: बिल्कुल। और ये दिन लाखों छोटे किसानों, श्रमिकों के अधिकारों, सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां और उचित व्यापार के प्रति भी जागरूकता पैदा करता है।
0: ये तो सच है विनीता कि अगर घर में भी लोग आ जाते हैं ना, तो अगर चाय है वो नहीं पीते हैं, तो सोचना पड़ता है कि उन्हें क्या पिलाएं, क्या
1: पिए। और अगर कोई ये बोल दे कि मैं चाय नहीं पीता, तो हमारा ही मन खराब हो जाता है ना,
0: विश्वास ही नहीं होता।
1: बिल्कुल। लेकिन हाँ, चाय के आप दीवाने जरूर बने, पर अपनी सेहत का ख्याल
0: रखते
1: हुए, और हो सके तो थोड़ा सा चीनी कम डालें।
0: हाँ,
1: है ना, क्योंकि सेहत का ख्याल रखना भी तो बहुत जरूरी है ना।
0: और हाँ, अब उसमें से कुल्हड़ वाली चाय में ना थोड़ा चीनी कम में चल जाता है।
1: चल जाता है, बिल्कुल। और आजकल चाय के इतने फ्लेवर आ गए हैं कि आप थोड़ा कम में भी पियेंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो ना लाइफ में चीनी को कम होने दे, ना चाय में, लेकिन हाँ सेहत का ख्याल रखें।

0: अगस्त की छुट्टी हो गई है,
1: बिल्कुल हो गई है,
0: अपने दादी और नानी के यहाँ जाने को बेताब है।
1: बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, आप अब कुछ घूमने फिरने की बातें करने वाली हैं, है ना। हाँ
0: हाँ।
1: तो क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई तो अब कुछ बातें पर्यटन की करनी चाहिए, है ना। और छुट्टियों का समय भी आ चुका है जैसा कि रेनू जी बता रही हैं, तो चलिए ना आज आपको ज्यादा दूर नहीं पास ही लिए चलते हैं। आपको बताए वैसे भी रेनू जी, हमारे झारखंड में जगहों की कमी नहीं है,
0: जगह सच में।
1: झारखंड में अगर घूमना चाहें तो आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं और कम खर्च में अच्छी जगह का आनंद ले सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि यहाँ पास ही में है गुमला जिला, यहाँ के पालकोट प्रखंड में है निर्झर रहस्यमयी जल स्रोत, जहाँ की कहा जाता है कि साल भर फ्रिज जैसा ठंडा पानी बहता है। और खास बात तो ये है कि ये पानी आता कहाँ से, यानी कि पानी का स्रोत अब तक रहस्य बना हुआ है।
0: बिल्कुल सही। वैसे भी गुमला जिला चारों ओर हरे भरे जंगल पहाड़ नदियों से भरा पड़ा है। ऐसा लगता है कि मानो गुमला को प्रकृति ने बड़े फुर्सत से संवारा है। इस जिले में प्रकृति के साक्ष्य के रूप में कई ऐसे चीजें मौजूद है नवीनीता जो अब तक रहस्य बनी हुई है। उसी में से एक है गुमला जिला के पालकोट प्रखंड स्थित ठंडे पानी का निर्झर। बातें और भी होंगी पर इस सांग के बाद।

0: तो हम बातें कर रहे हैं गुमला के निर्झर जल स्रोत की। तो कहते हैं ना रेणु जी कि शिव जी की कृपा यहाँ पे बहुत ज्यादा है कि ऐसी कड़ाके की गर्मी में भी वहाँ फ्रिज के जैसा ठंडा पानी मिलता है। ये पालकोट पंपापुर में पहाड़ के नीचे स्थित है और इसकी खासियत ये है कि मौसम चाहे जैसा भी हो पानी कभी घटता बढ़ता नहीं है और हमेशा चाहे ठंड का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो ठंडा ही मिलेगा। और पानी कहाँ से आता है किसी को नहीं पता है। तो यहाँ के
1: पानी रहस्य बना हुआ
0: बिल्कुल
1: है।
0: और पानी के बीच में ही अपरूपी शिवलिंग भी वहाँ पे है
1: जो कि पालकोट वासियों के लिए तो वरदान है।
0: हाँ।
1: एक और खासियत यह है कि यहाँ जितनी अधिक गर्मी पड़ती है पानी उतना ही अधिक ठंडा होते जाता है। काफी दूर दूर से पर्यटक इस अद्भुत छटा को देखने के लिए आते हैं और वहाँ के लोगों का विश्वास है कि ये भोले बाबा की कृपा ही है। तो ज्यादा दूर नहीं है, एक बार होकर आइए इस रहस्यमयी जगह पर।

0: तो रेणु जी, बहुत सारी बातें हमने कर ली है ना।
1: हाँ
0: तो अब बातों बातों में ही अब जाने का वक्त भी आ रहा है, तो चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि जिंदगी में उनके साथ रहिए और चुनिए जो आपके मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हों, यानी कि आपको उनसे खुशी मिले।
1: यानी कि खुशियों के साथ खुद के साथ कोई समझौता ना करें। इन बातों के साथ जोहार रांची कार्यक्रम में बस इतना ही,
0: तो विनीता
1: और
0: और
1: रेणु को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: जोहार।
1: जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार रांची। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर और 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त है फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। कार्यक्रम आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: आज पड़े भारतीय सेना।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो मैं 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। तो चलिए आपकी पसंद के गाने हम आपको सुनवाते हैं। तो पहला सॉन्ग हमने लिया है हीनू से प्रवीण कुमार की, जिन्होंने सुनना चाहा है जलेबी फिल्म का गीत केके और श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

और अगली फरमाइश आई है मोहाली से टीडी मल्होत्रा की और कालका हरियाणा से सुखचंदर बजाज और लोअर कुमारी की। इन्होंने सुनना चाहा है रामलीला फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में।

वेकअप सेद। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं। कविता सेठ की आवाज में, संगीत है शंकर एहसान लॉय का, और इस गीत को सुनना चाहा है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने।

और अगली फरमाइश हमने लिया है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर विरक जैतिक विरक और मीका विरक की। इन्होंने सुनना चाहा है सिंघम फिल्म का गीत श्रेया घोषाल की आवाज में।

0: सुबह की चाय और अपनों का साथ दिन बना देता है बेहद खास। हर घूंट में मिलती है नई ऊर्जा और मन में जगती है नई आस। और आज आपके दिन को फिर से खास बनाने आ गई है आपकी अपनी रेडियो सखी खुशबू आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में,
1: और साथ में महजबीन सखियों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। वैसे सखियों, आज का दिन है बड़ा खास। आज है 21 मई और आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, जो कि हर साल इसी दिन मनाया जाता है। वैसे सखियों, इस दिन को मनाने का मुख्य कारण है चाय के महत्व को बढ़ावा देना और चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
0: वैसे सखियों, हम सभी चाय प्रेमियों को तो चाय पीने का बस एक बहाना चाहिए, फिर चाहे मौका कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत चाय से ही होती है। सखियों, हम में से ज्यादातर लोग सुबह की चाय को सुकून के साथ पीना पसंद करते हैं। ठंडी हवा चल रही हो बालकोनी में या छत में या कमरे में, आप कहीं भी बैठकर मौसम का नजारा देखते हुए चाय की घूंट पीते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और सखियों, चाय के तो कई रूप है और बहुत प्रसिद्ध चाय भी होती है, जैसे कि कश्मीरी कहवा कह सकते हैं, जो कि एक कश्मीर की एक पारंपरिक और बेहद लोकप्रिय हर्बल ग्रीन टी है, जिसमें मसाले होते हैं, केसर होते हैं, सूखे मेवे होते हैं। और ये सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि कश्मीरी संस्कृति में मेहमान नवाजी का प्रतीक है। यानी चाय है ना, वो मेहमान नवाजी के लिए सबसे अच्छा विकल्प है ना।
1: और सखियों, चाय केवल एक पेय पदार्थ ही नहीं बल्कि इससे लोगों की भावनाएं और रिश्ते भी जुड़े हुए होते हैं। भारत में शायद ही कोई घर ऐसा हो है जहां दिन की शुरुआत चाय के बिना होती हो, क्योंकि चाय हमें बिल्कुल तरोताजा कर देती है। चाय थकान मिटाती है, ताजगी देती है और लोगों को एक दूसरे के करीब भी लाती है, और ये भी काम करती है खुशियां बांटने का, अगर हम कह सके तो इसे। कारण यह कहा भी जा सकता है कि चाय तेरे कितने रूप।
0: बिल्कुल, चाय के तो अनगिनत रूप भी है महजबीन, जिसमें अलग रंग होता है, अलग स्वाद होता है, अलग संस्कृति होती है, और झारखंड में इसकी अलग झलक भी देखने को मिलती है। वैसे अब सुबह की ताजगी वाली जो चाय होती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। सुबह की एक प्याली चाय पूरे दिन को ऊर्जा से भर देती है। आपको अक्सर घरों में, गली में, मोहल्लों में या नुक्कड़ पर लोग सुबह की अखबार पढ़ते हुए या परिवार के साथ बैठकर चाय का आनंद लेते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि सुबह की चाय से ही दिन की अच्छी शुरुआत होती है।
1: वैसे ही जैसे कि दोस्ती, हम कहे कि दोस्ती के बीच में या फिर बातचीत वाली चाय, जहां दोस्तों की महफिल हो या फिर परिवार की बैठक, चाय हर घर के में मिलती है देखने के लिए। यानी कि अगर हम कहें कि चाय के बिना तो सुबह ही नहीं होती है, कई रिश्ते तो चाय की प्याली के साथ मजबूत भी होते हैं। लोग घंटों बैठकर चाय के साथ अपना दुख सुख भी बांटते हैं। यार खुशबू, और ये भी हम कह सकते हैं कि चाय दुख, खुशियाँ और

ताव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सरकार से एमएसएमई विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों
1: जेमोन प्रतिवादी तिमनी मानुष
2: को सुनकर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा।
3: प्रसव को बढ़ावा देने, शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने, पोषण ट्रैकर ऐप के इस्तेमाल और अपार आईडी निर्माण कार्य में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए गए। रांची में जिला जज एवं स्वच्छता समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए गए। सीबीआई की धनबाद टीम ने सीजीएसटी के गिरिडीह कार्यालय में 15 घंटे लंबी छापेमारी की है। टीम ने इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले को सुलझाने के एवज में रिश्वत लेते सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए धनबाद ले जाया गया है।
4: जीएसटी के दो पदाधिकारी मिल करके जांच के नाम पर और एनओसी के नाम पर पैसा की मांग कर रहा था। इस सीबीआई के नंबर पर हम भी बात किए, उसके बाद रिपोर्ट को लिखवाए, उसके बाद जो भी हुआ रिकॉर्ड हुआ, जांच हुआ, आया देखा और जो भी कुछ हुआ देने की जो बात था तो आज हमने 50,000 रुपया दिए जो आज पकड़ा गया है।
3: झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। परिषद ने उम्मीदवारों की मांग और विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। जैक द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार अब अभ्यर्थी जेटेट के लिए आगामी 2 जून तक ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान कुल 30 एजेंडों को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें विश्वविद्यालय में शोध और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन खोलने का फैसला शामिल है। भारतीय सेना ने 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना यानी TES 56 कोर्स के लिए योग्य युवाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 12वीं कक्षा और JEE मेंस 2026 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून तक भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना पुलिस ने बीते 15 मई को हुई फायरिंग की घटना का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी कर इन आरोपियों को दबोचा।
5: तो ये 6 लोगों की कुल मिलाकर इस मामले में अब तक गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से जो सामान बरामद हुए हैं उनमें 4 अवैध देसी पिस्टल है, 5 जिंदा गोलियां हैं, 1 खोखा, 3 खाली मैगजीन, जो गाड़ी जो इस्तेमाल हुई थी उस घटना में उसको भी बरामद कर लिया गया है और 6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन।
3: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 136 अंक बढ़कर 75,454 पर और निफ्टी 72 अंक बढ़कर 23,731 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,48,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपए प्रति किलो है। राज्य में गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कोडरमा जिला इन दिनों भीषण लू और तपिश की चपेट में है। जिले में सुबह 10 बजते ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। भीषण गर्मी के कारण स्थानीय नदी और जलाशयों का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर राजीव कांत पांडे ने श्रोताओं से अपील की है कि वे डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बिना जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलें।
6: कि अगर जरूरी ना हो तो आप भारी धूप में ना जाएं। यदि आपको किसी कारण से निकलना ही होता है तो सारा प्रोटेक्शन ले, जैसे कि कोई गंतरा बांध के रखे, हो सके तो जो ढके हुए वाहन हैं उनका प्रयोग, बाइक और टू व्हीलर हो सके तो अवॉइड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें, बार बार पानी पिए, इलेक्ट्रोलाइट साथ में रखें, अपने यूरिन के कलर को वॉच करते रहें।
3: राजधानी रांची में कल से 25 मई तक 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड एथलेटिक्स संघ के सचिव एसके पांडे ने बताया कि इस महाकुंभ में देश भर से लगभग 700 खिलाड़ी और 150 तकनीकी पदाधिकारी भाग लेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता। रांची में एक साथ

27 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष डाले हथियार। रांची में समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, शत प्रतिशत टीकाकरण और अपार आईडी कार्य में तेजी लाने के निर्देश। जेटेट के अभ्यर्थियों को जैक ने दी बड़ी राहत, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर अब 2 जून की गई। रांची विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में 30 एजेंडों को मंजूरी, उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए खुलेगा नया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और रांची में कल से शुरू होगा देश का बड़ा खेल महाकुंभ, 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, जिसमें आज आप सुनेंगे खमाज में ठुमरी। कलाकार हैं सिद्धेश्वरी देवी।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, जिसमें आज आपने सुना खमाजमी ठुमरी सिद्धेश्वरी देवी से। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे पॉप सॉन्ग्स फाल्गुनी पाठक से।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीन से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और इटली इक्तिसादी राब्तों को वसत देने के लिए भारत मशरक वस्ता यूरोप माशी राहदारी को मजीद फरोग देने पर मुत्तफिक हो गए हैं। हुकूमत ने सारफीन, पेशावर अफराद और एस्थेटिक क्लिनिक्स की जानिब से इंजेक्शन के जरिए कॉस्मेटिक मसनूआत के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। मरकज ने इबोला बीमारी से मुतासर मुल्कों से पहुंच रहे या ट्रांजिट कर रहे मुसाफिरों के बारे में एडवाइजरी जारी की है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी मदरसों में प्रेयर गीत के तौर पर वंदे मातरम को लाजमी करार देने का हुक्म जारी किया है। तमिलनाडु में वजीर आला सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली काबीना में 4 खवातीन वजीरों की इजाफे के बाद वुजरा की तादाद 33 हो गई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और इटली ने तिजारत सरमायाकारी को मजबूत और मुस्तहकम करने और सप्लाई के सिलसिले को बेहतर बनाने की गरज से भारत मशरक वस्ता यूरोप इकतसादी कॉरिडोर IMEC को मजीद फरोग देने से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इटली की

0: कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है। टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
1: India has recently launched
2: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
1: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
4: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
5: चाय, ये चाय।
6: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती।
8: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल, थल, काल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: और आइए जय भारती कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ए आर रहमान की आवाज में इस खूबसूरत गीत के साथ।

और आइए अब सुनते हैं वेकअप से फिल्म का गीत कविता सेठ की आवाज में। संगीत शंकर एहसान लॉय का है और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने। आप सुन रहे हैं जय भारती कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

और कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में सनी फिल्म का गीत। संगीत आर डी बर्मन का है और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के लिए परिणामोन्मुख कार्य की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समयबद्ध परीक्षा और रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राज्यपाल ने कुलपतियों से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण, शोध, नवाचार, कौशल आधारित शिक्षा और इंडस्ट्री लिंकेज को मजबूत करने का आह्वान किया। राजधानी रांची में धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी के 25 नक्सलियों और जेजेएमपी के दो उग्रवादियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 8 नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके खिलाफ 426 मामले दर्ज हैं। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास और उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
1: मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं, उनका सभी का जो भी आवश्यकताएं है अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे।
0: कोल्हान के सारंडा में सक्रिय 25 से अधिक नक्सलियों के एक साथ समर्पण करने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य मुख्यधारा से भटके हुए लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना है।
2: सरकार की नजर, सरकार की आवाज पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और निश्चित रूप से सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि हर व्यक्ति सरकार के साथ जुड़े, कोई भी ना छूटे, और आज उसका परिणाम है कि लोग तेजी से मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि के अवसर पर नामकुम स्थित उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे एवं सुप्रियो भट्टाचार्य भी उपस्थित थे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की मिसाल रहा है। झारखंड राज्य में उनका योगदान अमिट है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने आज व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 9 मामले दर्ज किए गए और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद अधीक्षक अरविंद कुजूर ने बताया कि जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों की सूचना देने वाले लोगों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। भारतीय एथलेटिक्स संघ के निर्देश पर झारखंड एथलेटिक्स संघ और खेल विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 22 मई से 25 मई 2026 तक रांची में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 700 खिलाड़ी और 150 तकनीकी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे और इसके प्रदर्शन के आधार पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो तथा एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 जापान के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रांची केंद्र। कुछ ही देर में आप सुनेंगे नॉनस्टॉप अंताक्षरी।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि खत न होने दे किसी के चेहरे की मुस्कुराहट, बड़ी मुश्किल से आती है ये कुदरती आहट। तो चलिए इन प्यारी बातों के साथ नॉनस्टॉप अंताक्षरी का ये सफर शुरू करते हैं, जहां आप सुनेंगे बैक टू बैक बहुत सारे हिट सॉन्ग। आप हैं अपनी दोस्त विनीता के साथ, तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ।

आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप अंताक्षरी आकाशवाणी के रांची केंद्र से और आप हैं अपनी दोस्त विनीता के साथ। तो अब नेक्स्ट सॉन्ग बहुत ही प्यारा सा।

इसी के साथ नॉनस्टॉप अंताक्षरी का ये सफर आज बस यहीं तक। कहीं जाइएगा नहीं, लौटेंगे कुछ ही पलों में प्रोग्राम रांची मेलोडीज के साथ।

0: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रांची केंद्र और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रांची मेलोडीज। मैं हूँ आपकी दोस्त विनीता। कहते हैं कुछ बातें, कुछ लोग और उनसे बने रिश्ते कभी भुलाए नहीं जा सकते। तो चलिए आज हम भी उन लम्हों की बातें करते हैं जो कभी पुराने नहीं होते, बल्कि कुछ यादें तो ऐसी होती है जो वक्त के साथ धुंधली नहीं बल्कि और गहरी होती जाती है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत इस ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ।
1: ओ शामा तेरी

लहर तेरे ख्यालों की मेरे वजूद को भिगो जाती है, एक बूंद तेरी याद की मुझे इश्क के दरिया में डुबो जाती है। तू है या नहीं पता नहीं, पर तेरे होने की खुशबू मुझे कुछ खास बना जाती है।

दिल से तेरा ख्याल ना जाए तो मैं क्या करूं, तू ही बता तू याद बहुत आए तो मैं क्या करूं। हसरत है तुझे एक नज़र देख लूं, मगर किस्मत वो लम्हा ही ना लाए तो मैं क्या करूं।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रांची मेलोडीज। अब एक और प्यारा सा गीत। तुम्हारा हाथ थाम कर यूं ही बैठ जाने का दिल करता है, तुम्हारी बातों में तुम्हारी यादों में खो जाने को दिल करता है। मिलता है इतना सुकून तुम्हारे करीब आकर कि बस तुम्हारे पास आकर जिंदगी बिताने को दिल करता है।

इश्क वो नहीं जो लफ्जों में बयां हो जाए, इश्क तो वो है जो आंखों से समझ आए, है ना। तो चलिए इन बातों के साथ ये खूबसूरत सा सफर आज बस यहीं तक। तो विनीता को दे इजाजत इस प्रोग्राम से। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि झारखंड के उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के लिए परिणामोन्मुख कार्य की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कुलपतियों से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण, शोध, नवाचार, कौशल आधारित शिक्षा और इंडस्ट्री लिंकेज को मजबूत करने का आह्वान किया। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जमशेदपुर में कांग्रेस ने जिला कमेटी के नेतृत्व में साक्षी आम बगान से उपायुक्त कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा। चतरा के जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट सह प्रशिक्षण भवन हॉल में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के लगभग 550 किसानों को बदलते मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आकस्मिक फसल अपनाने की सलाह दी।

0: 13 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री और उससे अधिक पहुंच गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत, प्रस्तुति प्रभु शरण की है।
1: आजकल लोग ओवरटेकिंग करके दिखावा करने के लिए कई बार काफी तेज गति में गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और कई सारे लोग इसी तेज गति के कारण, ओवरटेकिंग के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए जब भी सड़क पर गाड़ी लेके निकले तो उन गाड़ी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, और सड़क पर चलने वाले बहुत सारे जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तेज रफ्तार और गलत तरीके से ओवरटेक करना न केवल चालक के लिए बल्कि सड़क पर चल रहे व्यक्ति के लिए भी काफी खतरनाक साबित होता है। ओवरटेकिंग यानी आगे चल रहे वाहन को पार करना, ये तभी सुरक्षित माना जाता है जब सही नियमों का पालन किया जाए। लेकिन आजकल कई लोग बिना संकेत दिए गलत दिशा में या तो गाड़ी मोड़ देते हैं या फिर ओवरटेक करने के लिए काफी जल्दबाजी कर बैठते हैं। गलत ओवरटेकिंग के कारण सामने से आने वाले वाहन से टक्कर हो सकती है। कई बार बाइक सवार या पैदल यात्री भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। खासकर हाईवे पर तेज गति और लापरवाही से ओवरटेक करना बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकता है। अगर हम बात करें बीते कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की, तो ओवरटेकिंग और तेज गति सबसे पहले जो समस्या है वो निकल कर आती है कि लोग जल्दबाजी में कहीं पहुंचने के लिए काफी तेज गति में गाड़ी चलाते हैं, ओवरटेकिंग करते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा कई बार लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं ड्राइविंग के समय और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर बैठते हैं, शराब पीकर वाहन चलाते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी का उपयोग करते हैं। और ये सारी जो चीजें हैं आजकल खास करके युवा वर्ग में काफी देखी जा रही है, और स्टंट करना, रेसिंग करना, ये सारी चीजें जो है आजकल के युवाओं में खासकर ज्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए अगर इस तरीके की चीजों से बचना है तो ओवरटेकिंग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तेज गति से चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जल्दबाजी में अगर कहीं पहुंचना चाहते हैं तो घर से जल्दी निकले तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपकी गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी, और सड़क पर चलने वाले जो लोग हैं वो भी आपकी इस संयमपूर्ण गाड़ी चलाने के तरीके से सुरक्षित हो पाएंगे। तो ये हमने बात कर ली कि ओवरटेकिंग और तेज गति से वाहन चलाने से क्यों बचना चाहिए इसके बारे में। अब बारी है भेंटवार्ता की, और भेंटवार्ता में आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय की, वो है हीट वेव और लू से बचाव के तरीके और इसके क्या उपचार हैं इसके बारे में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीके गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सक, ऑर्किड मेडिकल में कार्यरत हैं। और सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू।
1: जैसा कि अभी वैसे तो इस बार गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है झारखंड में, और पूरे देश भर में गर्मी का जो असर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम मौसम के अनुसार रहते हैं, मौसम के अनुसार खाते पीते हैं और उसी के अनुसार हम अपनी सारी चीजों को करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति काम करता है, बाहर निकलता है और अपने सभी कामों को करने के लिए उसे घर से बाहर निकलना जरूरी होता है, तो इस कंडीशन में किस तरीके का खान पान रखना चाहिए, लोगों को किस तरीके से रहना चाहिए, उसके बारे में सबसे पहले बताएं।
2: देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हीट वेव क्या है, हीट स्ट्रोक क्या है और लू लगना क्या है
1: जी।
2: तो ये बात समझने के लिए समझना चाहिए कि आदमी के शरीर जो है टेम्परेचर रेगुलेट होता है वो ब्रेन से होता है, हाइपोथैलेमिक सेंटर होता है वो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, क्योंकि बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है तो एनर्जी पैदा होती है तो हीट पैदा होती है, तो हीट जो है उसको जो है डाइल्यूट करता है। कैसे करता है, आप देखते हैं पसीना निकलता है, यूरिन पास होता है, तो ये सब चीजें जो है बॉडी मैकेनिज्म है उसको ठंडा करने का। तो अगर थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम काम करता रहता है तो नॉर्मल रहता है चीजें जो है, लेकिन जब कोई बीमारी होती है, जब कुछ होता है, जैसे बुखार आता है तो भी और थर्मो रेगुलेटरी पूरा काम करता है, लेकिन उससे भी जब ज्यादा होता है तो बुखार होता है तो आप दवा देते हैं, आप उसका रीजन समझते हैं। अब ये जो हीट स्ट्रोक, हीट वेव है, ये तभी होता है जबकि बहुत ज्यादा देर आदमी जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रह जाए, पानी उसके शरीर के अंदर ना हो, पानी नहीं पिया हो, भूखा हो, खाना भी नहीं खाया हो, तो उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो वो हीट स्ट्रोक होता है तो उसमें जब टेम्परेचर 45 डिग्री, मतलब जो आप समझिए कि जब आपको 105 डिग्री फारेनहाइट हो जाए बॉडी का टेम्परेचर, तो आप समझिए कि आप हीट वेव में चले गए हैं
1: जी।
2: तो उस समय बॉडी जो है रेगुलेट करना बंद कर देती है, थर्मो रेगुलेशन सिस्टम एक तरह से काम नहीं

0: करता है। तो अब क्या करना है आपको ये सोचना है उस समय।
1: जी
0: तो लू से बचना तो एक छोटा छोटा धीरे धीरे का स्टेप होता है, वो स्टेप काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि जैसे तुरंत हीट स्ट्रोक नहीं होता है, जैसे पहले हीट एग्जॉशन होता है, हीट एग्जॉशन से पहले भी क्रैम्प्स होता है, आदमी को थोड़ा सा चक्कर आता है, आदमी को वोमिटिंग लगती है, आदमी को फील होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोई एक मिनट में हार्ट अटैक की तरह नहीं होता है।
1: जी जी जी
0: फिर हीट एग्जॉशन होता है, हीट एग्जॉशन होता है कि आदमी एकदम काम करने का मन नहीं करता है, चक्कर आने लगता है, बैठ जाता है, फिर भी वो काम करता रहता है कि उसकी मजबूरी की उसी धूप में काम कर रहा है, तो फिर उसके बाद वो हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो ये स्टेज होती है
1: जी,
0: जिस स्टेज पर आप उसको रोक लीजिए। अब रोकने का क्या तरीका है कि आप ठंडे में रहिए, हवा है, आप खूब पानी लीजिए, पानी पीजिए, नमक शक्कर नींबू का पानी पीजिए, क्योंकि सोडियम का ही ज्यादातर जो है डिप्लीशन होता है। तो अगर आपने उसको अपना ही उपचार शुरुआत से कर लिया, हीट स्ट्रोक होने से पहले कर लिया, तो बचाव भी संभव है। तो ये होता आदमी के गलती से ही है, क्योंकि वो मजबूर है, जैसे मजदूर है या बच्चा है जो नहीं जानता है कि भाई हम धूप में खेल रहे हैं, हमको ऐसा हो सकता है। आदमी है, काम कर रहा है, उसने सोचा ऐसा अभी खाना खाने का टाइम हो रहा है, आधा घंटा और काम कर लो, एक घंटा और काम कर लो, उसका मालिक खड़ा हुआ है, ठेकेदार खड़ा हुआ है, यानी तुम एक घंटा और काम करके आओ, तो वो लू लग सकता है। तो लू लगना मतलब हीट स्ट्रोक में चले जाना। तो बचाव के लिए आपको बता दिया कि हर स्टेप में कैसे करना है। और जहां तक रहन सहन की बात है, गर्मी का मौसम आ गया, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब लोग हैं, तो ये समझना चाहिए कि जितने गाढ़े कपड़े हैं, गाढ़े कलर के और स्पेशली काले कलर के कपड़े हैं, वो सब हीट एब्जॉर्बेंट होते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, आप ऐसे देखे होंगे कि शेख लोग जो हैं, जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहते हैं, यहाँ तो रांची का टेम्परेचर 30, 35, 40 रहता है या 45 पहुंच जाएगा, वो तो हमेशा ही 55 में रहते हैं। तो आप देखते हैं ना कि एकदम सफेद सफेद कपड़े पहने रहते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वो हीट को अंदर नहीं आने देता है। तो उस तरह के कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, ये नायलॉन, सिंथेटिक, टेरिलीन, टेरिकॉट, इस तरह के कपड़े पहनने नहीं चाहिए, और बहुत टाइट कपड़े भी गर्मी में नहीं पहनने चाहिए। ये बचाव के हैं। घर से निकलें, खाना खा लें, पानी पी लें, भरपूर पानी पिए, बीच में कभी भी प्यास लगता है तो रुक के पानी पिए,
1: यानी कि खाने पीने और जो बॉडी को ठंडा रखने का काम है वो जरूरी है गर्मी में,
0: वो जरूरी है। आप मतलब अगर बचाव चाहते हैं, हर चीज में क्या है, बचाव पहले
1: जानकारी होनी चाहिए।
0: हाँ, जानकारी होनी चाहिए, फिर सबको लागू होना चाहिए।
1: तो अगर हम लोग कहें कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं और उनकी मजबूरी है बाहर काम करना, तो वैसे लोगों को खाने पीने की जो चीजें हैं गर्मी के समय में, किन किन चीजों को खान पान में लेना चाहिए?
0: जैसे मैंने अभी आपको बताया, कभी भी गर्मी में खाली पेट जो है आदमी को काम नहीं करना चाहिए। जितना खाली पेट होगा उतना एग्जॉशन होगा, उतना थकेगा। अगर आदमी थोड़ा खाना, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा खाना खाना चाहिए, हमेशा आदमी को गर्मी में थोड़ा कम खाना चाहिए, और खाना हल्का खाना, और जैसे आप फल समझिए, जैसे खीरा, ककड़ी, सस्ते फल भी आते हैं जिसके अंदर की वाटर बहुत होता है, वाटर कंटेंट बहुत होता है, तरबूज है, खरबूज है, इस तरह के फल अगर लें, दूध है, दही है, मट्ठा है, छाछ है, ये सब चीजें लिक्विड चीजें ताकत भी देती हैं और रिहाइड्रेट भी करती हैं, बहुत देर तक करती हैं। सत्तू है, जैसे सत्तू घोल करके आदमी पीता रहे, थर्मस में रख ले, बॉटल में रख ले, क्योंकि खराब भी दो चार घंटे नहीं होता है। तो ये जो हल्के हल्की खाना है, दही है, सत्तू है, ये सब जो है ना, न्यूट्रिशन भी देता है, ताकत भी देता है, रिहाइड्रेट भी करता है, और लू लगने का कोई खतरा भी नहीं होता।
1: अभी गर्मी के समय में छोटे जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, तो इन लोगों के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए गर्मी में इनको?
0: जो सावधानी बड़े लोगों का है, करीब करीब वही सावधानी बच्चों का है। बच्चे जल्दी मतलब उनको पता ही नहीं चलता है कि हम धूप में इतना देर खेल रहे हैं, हमको प्यास लगी है, उनका तो खेलने का है। तो मदर फादर को ही मतलब ध्यान देना होगा कि बच्चा समय से पानी पिए, अच्छे से पानी पिए, पानी पीने का मन नहीं करता तो शरबत पिए, शरबत पीने का मन नहीं करता तो लस्सी पिए, जूस पिए, फ्रूट जूस पिए, लिक्विड किसी भी फॉर्म में, अगर लिक्विड किसी भी फॉर्म में बच्चा जो है 1 से 1.5 लीटर जो है अगर पी लेता है, तो मतलब हाइड्रेशन उसका अच्छा रहेगा, तो उसे कहीं भी खेलेगा कूदेगा कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बच्चे को बांध के कोई नहीं रख सकता कि नहीं तुम एसी में ही रहो, पंखा में रहो, तुम जरा भी नहीं खेलने जाओ, ये सब नहीं होना चाहिए।
1: लेकिन गर्भवती महिलाओं को तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उनके लिए गर्मी में कैसे रहना उनको जरूरी है?
0: कोई नहीं, उनका वही है कि एक थोड़ा लिमिटेशन वर्क का हो ही जाता है, मतलब 6 मंथ से ज्यादा या 3 मंथ हो या 9 मंथ हो तो लिमिटेशन तो वैसे ही उनका कम हो जाता है, बाकी खाते पीते ही रहे वही एक बचाव है, कोई इसमें दवाई तो लेनी नहीं है, दवाई ले दे करके वही है कि खाना पीना ढंग का खाना पीना रहेगा, स्वस्थ खाना रहेगा, बाजार की चीजें नहीं रहेंगी, बाजार की चीजें बहुत खतरनाक होती हैं, गर्मी के दिनों में किसी को नहीं खाना चाहिए क्योंकि कभी भी वोमिटिंग हो जाए, लूज मोशन हो जाए, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाए, तो अलग चीज हो गई, हीट स्ट्रोक अलग चीज हो गई, लेकिन अगर दोनों चीजें कंबाइन कर दीजिए तो बहुत जल्दी हो जाएगा कि पता चले वोमिटिंग भी हो रहा है, लूज मोशन भी हो रहा है, और साथ में धूप में काम भी करना पड़ रहा है, धूप में जाना भी पड़ रहा है।
1: यानी कि खान पान से लेकर के आप जो कपड़े पहनते हैं उन सभी चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जो लोग धूम्रपान करते हैं या नशा का सेवन करते हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, क्या उन्हें गर्मी के समय में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है?
0: देखिए ऐसा कोई एक्लिमेटाइजेशन एक चीज होती है, एक्लिमेटाइजेशन जैसे कुछ लोग हैं बहुत जल्दी एक्लिमेटाइज कर लेते हैं, जैसे जिनकी आदत होती है बार बार एसी में रहना, बाहर निकलना, बाहर निकल करके फिर अंदर आना, तो अपने को एक्लिमेटाइज कर लेते हैं, उनको आदत सी पड़ जाती है। लेकिन जो कोई पहली बार ऐसा हुआ हो कि मतलब जो है अचानक एसी में रहा हो और फिर धूप में चला जाए, तो उसको हो सकता है कि एक्लिमेटाइजेशन तुरंत नहीं हो तो उसकी उस वजह से उसको तुरंत धूप लग जाए, तुरंत प्रॉब्लम हो जाए। हार्ट के लोगों को क्या है, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, डरे भी बहुत रहते हैं, तो उनको सेफ्टी तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए। अब इसमें ये तो है ना कि बहुत ज्यादा पानी पीना है, बहुत ज्यादा खाना खाना, ऐसा कुछ नहीं।
1: सेफ्टी में उनको क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: कोई सेफ्टी में उनको वही है कि ओवर एग्जर्शन नहीं हो, कभी भी ओवर एग्जर्शन नहीं करना चाहिए गर्मी के दिन में, इनफैक्ट किसी को भी ओवर एग्जर्शन नहीं करना चाहिए। ओवर एग्जर्शन करने से अगर साथ में कोई भी एसोसिएटेड फैक्टर होगा तो उसको बढ़ने के चांस हो जाते हैं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए, ओवर एग्जर्शन नहीं करें, रिलैक्स होकर के वही खाना पीना जो है, हमेशा रिहाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए कि पानी जो है, पानी जूस मट्ठा जैसे हमने बताया कि लिक्विड जितनी चीजें जरूरी नहीं कि केवल पानी ही ले, अगर ये है कि लिक्विड फॉर्म में जो है लेता रहेगा तो सफिशियंट जो है 3 to 4 liter अगर जो है गर्मी के दिनों में दिन भर में आदमी ले लेता है ये सफिशियंट।
1: सही कह रहे हैं आप, क्योंकि गर्मी में हम इस बात को भूल जाते हैं कि कब पानी पीना है कब खाना है, और काम की धुन में अक्सर ऐसा लोग करते हैं, लेकिन इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है क्योंकि गर्मी अभी काफी ज्यादा बढ़ गई है और सरकार की तरफ से भी इस पर काफी नियंत्रण के लिए लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है। लेकिन आप और हम जब भी काम के लिए बाहर निकलते हैं तो सुरक्षा के सभी उपायों को करके निकलें ताकि गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिल जाए। अगर आप सावधान रहते तो आप लू लगने से और हीट वेव के खतरे से बच सकते हैं, और खान पान से लेकर के हर व्यवस्था अगर आप बाहर निकल रहे हैं।
0: फिर दूसरा ये जो अभी सबके मन में भ्रम है कि इलेक्ट्रॉल खरीद लें पी लें, नहीं, वो भी बहुत ज्यादा लेने से नुकसान हो सकता है, बच्चे को तो ज्यादा ही नुकसान हो सकता है, बड़े भी अगर उसको लेंगे बिना वजह बेवजह, ना डायरिया भी नहीं है, वोमिटिंग भी नहीं है, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉल पिए जा रहे हैं तो वो नुकसान भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा देसी इलाज है कि सिकंजी पीजिए, नमक शक्कर नींबू का पानी पीजिए टेस्ट वाला, आप इलेक्ट्रॉल के लिए क्यों भागे जा रहे हैं।
1: तो आज इतना कीमती समय निकालकर आप आए और हमारे स्टूडियो में इतनी अच्छी जानकारी हमें मिली आपसे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे भेंटवार्ता में हीट वेव और लू से बचाव के क्या तरीके और उपचार हैं इसके बारे में, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे आज हमें डॉक्टर पी के गुप्ता। तो इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए, तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद हम लौट कर आएंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और अब बात करते हैं वैज्ञानिकों के बारे में। आज हम जिस महान वैज्ञानिक की बात करने वाले हैं उनका नाम है हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि ऐसे आविष्कारक थे जिन्होंने अपने ज्ञान और प्रयोगों से मानव जीवन को सुरक्षित और बेहतर बनाने का कार्य किया। इनके द्वारा किए गए प्रयोग आज भी विज्ञान की दुनिया में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हम्फ्री डेवी का जन्म 17 दिसंबर सन 1778 को इंग्लैंड के कॉर्नवॉल क्षेत्र के छोटे से नगर पेंजिस में हुआ। इनके पिता एक साधारण कारीगर थे और आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं थे, लेकिन डेवी बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और काफी जिज्ञासु छात्र थे। इन्हें प्रकृति, पेड़ पौधों और रसायनों से जुड़े छोटे छोटे प्रयोग बहुत आनंद देते थे। बचपन में ही इन्हें ये समझ आ गया था कि दुनिया को समझने का सबसे अच्छा माध्यम विज्ञान है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई। जब ये किशोर अवस्था में थे तभी इनके पिता का निधन हो गया, इसलिए इन्हें पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ा। बाद में इन्होंने एक डॉक्टर और सर्जन के यहाँ प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया। यही वो समय था जब इनकी रुचि चिकित्सा और रसायन विज्ञान की ओर काफी ज्यादा बढ़ गई। काम के दौरान हम्फ्री डेवी को वैज्ञानिक पुस्तकों और प्रयोगों का अवसर भी मिला। इन्होंने स्वयं अध्ययन करके रसायन विज्ञान की गहरी जानकारी प्राप्त की। जल्द ही इनकी प्रतिभा लोगों के सामने आने लगी और ये काफी प्रसिद्ध भी हो गए। इन्हें इंग्लैंड के प्रसिद्ध ब्रिस्टल न्यूमेटिक इंस्टीट्यूशन में काम करने का अवसर मिल गया। यहाँ पर इन्होंने विभिन्न गैसों का प्रयोग शुरू किया। उस समय वैज्ञानिक गैसों के प्रभावों को समझने का प्रयास कर रहे थे। हम्फ्री डेवी ने नाइट्रस ऑक्साइड गैस पर काफी शोध किया। यह गैस सूंघने पर मनुष्य को हंसी और आनंद का अनुभव कराती थी, इसलिए इसे लाफिंग गैस भी कहा जाने लगा। हम्फ्री डेवी ने ये भी खोजा कि ये गैस दर्द कम करने में सहायक है या नहीं। आगे चलकर इसी खोज का उपयोग ऑपरेशन और दंत चिकित्सा में बेहोशी की दवा के रूप में किया जाने लगा। हम्फ्री डेवी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक विद्युत और रसायन विज्ञान को जोड़कर नए तत्वों की खोज करना है। उस समय वैज्ञानिक ये नहीं जानते थे कि बिजली की सहायता से रासायनिक पदार्थों को अलग किया जा सकता है। हम्फ्री डेवी ने विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस की तकनीक का उपयोग करके कई नए तत्वों को अलग करने में बहुत सफलता पा ली। इन्होंने पोटेशियम और सोडियम जैसे तत्वों को पहली बार शुद्ध रूप में प्राप्त किया। इसके बाद इन्होंने कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम और स्ट्रोशियम जैसे तत्वों पर भी काफी शोध किया। इनकी इन खोजों ने आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव को काफी मजबूत करने का काम किया। आज विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जो तकनीकें उपयोग होती हैं उनमें हम्फ्री डेवी के प्रयोगों का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। 19वीं शताब्दी में कोयला खदानों में काम करना काफी खतरनाक माना जाता था। खदानों में मीथेन जैसी ज्वलनशील गैसें जमा हो जाती थी और साधारण दीपक की लौ से विस्फोट हो जाया करते थे। इन दुर्घटनाओं में अनेक मजदूर भी अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन हम्फ्री डेवी ने इस समस्या को समझा और एक विशेष प्रकार का सुरक्षित दीपक यानी कि लैंप बनाने का काम किया। इस दीपक में लौ को महीन धातु की जाली से ढक दिया जाता था जिससे गैसों में आग नहीं फैलती थी। इस आविष्कार ने हजारों खनिकों की जान बचाने का काम किया। इनका ये आविष्कार आज भी विज्ञान और मानव सुरक्षा के इतिहास में एक महान उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। हम्फ्री डेवी की प्रतिभा के कारण इन्हें इंग्लैंड की प्रतिष्ठित संस्था रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नाइट की उपाधि दी गई। ये हमेशा से मानते थे कि विज्ञान का उद्देश्य केवल नई चीजों को खोज करना नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाना है। हमेशा युवाओं को प्रयोग करने, सवाल पूछने और नई खोज करने के लिए प्रेरित किया करते थे। इनका जीवन संघर्ष, मेहनत और सफलता का अद्भुत उदाहरण है। लगातार प्रयोगों और रसायनों के संपर्क में रहने के कारण इनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा और 19 मई सन 1829 को स्विट्जरलैंड में इनका निधन हो गया। हम्फ्री डेवी का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो व्यक्ति को नहीं रोक सकती। जिसके अंदर सीखने और कुछ नया करने का जुनून हो वो हमेशा आगे बढ़ता है। वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज खोज और आविष्कार में ड्रोन के बारे में। तो अब एक ऐसी मशीन की बात करने वाले हैं जो हवा में उड़ती है और कहीं भी पहुंच सकती है। ये देखने में जितनी छोटी है उतनी ही ये कारगर भी है और बहुत इसके उपयोग है। तो हम बात कर रहे हैं ड्रोन की। ड्रोन एक ऐसा मशीन है जो मानव रहित हवाई जहाज है और इसे यूएई जैसे विमानों के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे विमान होते हैं ये जिनमें कोई चालक दल या यात्री नहीं होता। ये स्वचालित ड्रोन या दूर से संचालित वाहन आरपीवी हो सकते हैं। यूएवी
नियंत्रित गति और ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और अमेरिका में पहले पायलट रहित वाहन विकसित किए गए थे। ब्रिटेन के एरियल टारगेट एक छोटे रेडियो नियंत्रित विमान का पहली बार मार्च 1917 में परीक्षण किया गया था, जबकि कैटरिंग बग के रूप में जाना जाने वाला अमेरिकी हवाई टॉरपीडो पहली बार अक्टूबर 1918 में उड़ा था। हालांकि दोनों ने उड़ान परीक्षणों में आशाजनक परिणाम दिखाए थे, लेकिन युद्ध के दौरान दोनों का परिचालन में उपयोग नहीं लिया गया। युद्ध के बीच की अवधि में मानव रहित विमानों का विकास और परीक्षण जारी रहा। 1935 में ब्रिटिशों ने प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए लक्ष्य के रूप में इसका इस्तेमाल किए जाने वाले कई रेडियो नियंत्रित विमान बनाए। ऐसा माना जाता है कि ड्रोन शब्द का इस्तेमाल इसी समय शुरू हुआ, जो इन मॉडलों में से एक DH-82B क्वीन बी के नाम से प्रेरित था। रेडियो नियंत्रित ड्रोन संयुक्त राज्य अमेरिका में भी निर्मित किए गए थे और लक्ष्य अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए इसका उपयोग भी किया गया था। ड्रोन का इस्तेमाल कई नई भूमिकाओं में भी किया जाने लगा था, जैसे कि युद्ध में प्रलोभन के रूप में काम करना, तय लक्ष्यों पर मिसाइल दागना और मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन के लिए। हाल के वर्षों में ऐसे मॉडल विकसित किए गए हैं जो लंबी उड़ानों में ईंधन भरने की समस्या से निपटने के लिए सौर ऊर्जा जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके काम करने लगे हैं। ड्रोन अब कई काम कर रहे हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन की निगरानी से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के बाद तलाशी अभियान चलाना, फोटोग्राफी, फिल्मांकन और सामान पहुंचाना भी इसमें शामिल हो चुका है। इनका उपयोग अधिकतर उन क्षेत्रों और भूभागों में निगरानी के लिए किया जाता है जहां सैनिक सुरक्षित रूप से नहीं जा पाते, लेकिन इनका उपयोग हथियार के रूप में भी किया जाता है और इन्हें संदिग्ध आतंकवादियों को मारने का श्रेय दिया जाता है। तो ड्रोन क्या है ये हम सभी जानते हैं। आज ड्रोन हम सभी ने देख रखा है, इसके इस्तेमाल के बारे में भी हमें जानकारी है, लेकिन ड्रोन का शुरुआती जो इस्तेमाल था वो बहुत सीमित था और इसका इस्तेमाल सैन्य कार्रवाइयों के लिए ही किया जाता था। तो ड्रोन का जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो चुका है, अब विस्तार ले चुका है और इसमें बहुत सारी नई चीजें जुड़ती चली गई हैं। आज ड्रोन के माध्यम से लोग सामान पहुंचाना भी शुरू कर चुके हैं। विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी चीज की कोई अंतिम सीमा नहीं है, उसमें हर क्षेत्र में नई नई तकनीकों का विकास होता रहता है। इसी तरह विज्ञान में आज ड्रोन में लगातार बदलाव आते चले जा रहे हैं और अब ऐसे ड्रोन भी आने लगे हैं जो इंसान को लेकर उड़ सकते हैं। ड्रोन अलग अलग तरीके के देख चुके हैं और भविष्य में हो सकता है कि ड्रोन के माध्यम से हम जिस तरह से आज हम कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में हम ड्रोन के माध्यम से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और शायद ऐसा मुमकिन हो कि ड्रोन भी एक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बन जाए। कुछ भी हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है। तो हमने आज ढेर सारी बातें कर ली, ढेर सारी जानकारियां आपके साथ साझा कर ली और अब चूंकि हमारे स्टूडियो का समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते हम आपसे यही कहना

कहेंगे कि अगर जीवन में आपने कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करने का सपना देखा है तो आपको मेहनत भी उसी तरीके से करनी चाहिए और पूरे लगन पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हुए हमेशा अपने

कभी धूप की तरह तपाती है तो कभी बरसात बनकर भिगो जाती है, कभी अपनों की भीड़ में तनहा कर देती है तो कभी अजनबी भी अपना सा लगने लगता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच यही है कि यह हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है। हार मिले तो सब्र सिखाती है और जीत मिले तो शुक्रिया कहना। कुछ लोग मिलते हैं और याद बन जाते हैं, कुछ बिछड़ते हैं और सीखते जाते हैं, लेकिन सफर चलता ही रहता है क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं। एक जिंदगी को इतना भी गंभीर मत बनाइए, यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। उलझनों ने मेरी राह आसान कर दी और हर ठोकर ने जीन।

जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन एक सच हमेशा याद रखिए, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन एक सच हमेशा याद रखिए।

जिंदगी हमें हर दिन एक नया मौका देती है खुद को बेहतर बनाने का, हार कर फिर मुस्कुराने का और गिर कर दोबारा उठ जाने का।

स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:02 हो चुके हैं। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारी आज की संध्याकालीन सभा में। आज की इस संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोता दोस्तों की हम सफर हूँ मैं संगीता। आइए करते हैं आज की संध्याकालीन सभा की शुरुआत और आप सभी को देते हैं जानकारी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे दें। अब से कुछ ही देर बाद श्रोताओं यानी कि संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवाएंगे युगल गीत। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा संध्या के 5:30 का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। संध्या 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार और संध्या के 6:02 पर आप आनंद लेंगे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग का। संथाली कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे संध्या के 6:30 पर। संध्या 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। यहीं से प्रसारित जिले में आजकल का प्रसारण होगा संध्या 7:10 पर। संध्या के 7:15 पर हम आपके साथ होंगे आप सभी श्रोताओं के फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद को लेकर। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का आनंद आप लेंगे रात्रि के 8:00। 8:45 पर प्रसारित होगा आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या। यहीं से प्रसारित न्यूज़ एट 9 को सुनेंगे रात्रि के 9:00। 9:15 पर आपको हम लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। गजलों का कार्यक्रम महफिल। इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि के 10:00। 10:30 पर हम आपके साथ होंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग को लेकर। रात्रि के 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग और रात्रि के 11:00 आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी समाचार। यहीं से प्रसारित अंग्रेजी समाचारों का प्रसारण समय रहेगा रात्रि के 11:05 का। और रात्रि के 11:10 पर श्रोताओं हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

FM के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:06 हो चुके हैं। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें श्रोताओं कि आज के इस कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं युगल गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म आंखें के इस युगल गीत के साथ, जिसे आवाज़ें दी हैं कुमार सानू, सुदेश भोसले और कविता कृष्ण मूर्ति ने।

अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों के स्वरों में श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म कोयला से। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम गुलदस्ता में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला युगल गीत फिल्म फिजा से। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

गायक कलाकार उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वरों में गाए हुए फिल्म फिजा के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए युगल गीत। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम, किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को आशा मणिगोप और
1: ठाकुर चंद्र मुर्मू का
0: जोहार। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। ठाकुर जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आशा जी अडी रस कलिंग बुझो के आते हैं और हो अलिंग सला बिन जपा मकाना नवा चास पास अखड़ा रे और तेहन अडी लेकाना कपाल मारा साउ साउते मीट बार चर्चा विषय लेकाते हो लंग बढ़ाए चुको आ तो चर्चा विषय लेकाते जो तो कुन मड़ंगते चर्ची बुहा मिसी को तेहन बुन कपाल मारा आ लतेदार सब्जियों की खेती।
0: बिल्कुल ठाकुर जी, अगर हम लतेदार सब्जियों की बात करें तो इनकी खेती कर हमारे किसान भाई बहन अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। लतेदार सब्जियों को दो वर्गों में रखा गया है। एक लतेदार सब्जी जिसे हम पकाकर खाते हैं, उसमें है कद्दू, लौकी, नेनुआ, करेला, सीस, कुमड़ा, टिंडा, परवल, कुंदरू, ये सब है। और जिसे सलाद के रूप में हम खाते हैं, उसमें है खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब है। ठाकुर जी, लतेदार सब्जियां सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, परंतु अच्छी पैदावार के लिए जल निकास युक्त दोमट बलुई दोमट मिट्टी जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म हो अच्छी मानी जाती है। बुआई के एक महीना पहले खेत में गोबर की सड़ी खाद, कंपोस्ट खाद अच्छी तरह मिला दें। इसके लिए थाला या नाला बनाकर एक स्थान पर 2 से 3 बीज बोना अच्छा होता है। साथ ही ठाकुर जी, लतेदार सब्जियों के लिए सहारा देना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मचान बनाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जो लतेदार सब्जियों का फैलाव है वो काफ़ी अच्छा होता है, और इसमें जो सूर्य का प्रकाश है, हवा, वो भी काफ़ी अच्छा से इसमें मिलता है, और कीड़े मकोड़ों का जो प्रकोप है वो नहीं रहता है।
1: सही कथा गया साजी। और नहीं तो जहाँ लेकर समय करना नवा लतेदार सब्जियों की खेती बारे रे तो चास मांग ते जहाँ लेकर आशा जी तीन की लई के लेकर चे नशे ना ओडे जहाँ रबन रोहे ओडे नेल मा जहाँ जगह रबन रोहे चे तोड़ाए ओडे खाला भी सेंग होगी नाम और ओडे जहाँ तीन हुई दड़े मा गुरी खोत जहाँ रोहड़ा हुई ओना सला मिसा करते ओडे बन कुसियो मा और कुसियो किन बाद ओडे अब ओना जिनिस को बन रोहे मा जहाँ जिनिस अब रोहे सा मा जहाँ के लातेदार सब्जी मा डिगान के मिना गया करुला मिना झींगा मिना कुंदरी मिना और इन साउ साउ ते नितो जहाँ टिंडा को मेना नौना को जो तो लतेदार सब्जी रिक लेखा तो नौ लगे ते मणांग से चल लेखा वो कुरमुटु या उनका के अबो नौ फसल नाम हो
0: बिल्कुल
1: और इन साउ साउ ते जहाँ का मचाने में इनके झाटा झाटा निहती लगती किया चिका तो ओतरे तहन कर अड़ी गान जिनिस सिया

0: ले भी जाते हैं?
1: हाँ, ले भी जाते हैं
0: जी। एक बकरी से लगभग कितने बच्चों का जन्म होता है?
1: कभी कभी तीन भी हो जाता है, उसके बाद तो दो और एक तो आई है।
0: अच्छा, और इन सबको बड़ा होने में लगभग कितना समय लगता है?
1: बड़ा होने में 3-4 महीने तो लगता है।
0: अच्छा, 3-4 महीने का समय लगता है। तो ये छोटे जो बच्चे हैं, इनको भी किस तरह देखभाल करते हैं?
1: उसको ऐसे ही, जैसे कि वो थोड़ा बड़ा होने से वो अपने से घास खाने जाते हैं।
0: अच्छा,
1: और उसके माँ के पास ही दूध पिलाते
0: जी। बकरी पालन से आपको किस तरह का लाभ मिल रहा है?
1: लाभ मिलता है जैसे कि कभी कभी जरूरत होने पर, पैसा की कमी होने पर, जैसे कि कहीं काम भी नहीं करते हैं तो बकरी चरा के कभी कभी जरूरत पड़ने पर बेच के पैसा उसी से चलाते
0: हैं। अच्छा, तो एक बकरी का मूल्य लगभग कितना रखते हैं बाजार में?
1: जैसे कि बड़ा, जैसे बड़ा है ऐसे दाम है, किलो हिसाब से हम नहीं देखे हैं
0: जी।
1: 6,000 से स्टार्टिंग है, उधर 12-15 तक हो जाता है।
0: अच्छा, 12-15 हजार के बीच मतलब आपको लाभ मिल जाता है?
1: हाँ, मिल जाता है
0: जी। ये तो बहुत ही अच्छा है। तो एक बकरी को लगभग बड़े होने में कितना समय लगता है?
1: 2-3 साल लग जाता है।
0: अभी आपके यहाँ लगभग 25 आप बकरियों को रखे हुए हैं?
1: 25 रखे हैं।
0: अच्छा, इसके अलावा आप मुर्गी पालन का भी कार्य किए हुए हैं?
1: हाँ, मुर्गी पालन का भी कार्य।
0: अच्छा, तो मुर्गी पालन के लिए किसी तरह की योजना का लाभ लिए हैं?
1: नहीं लिए हैं किसी तरह के।
0: अच्छा, ये मतलब अपना ही पूंजी लगाकर आप इसमें किए हुए हैं?
1: हाँ, अपने ही पूंजी लगाकर ये पालन कर रहे हैं।
0: अच्छा, तो मुर्गी पालन, बकरी पालन में किसी तरह की कोई समस्याएं आती है क्या?
1: कभी कभी आ जाता है समस्या।
0: अच्छा, तो वो किस तरह की समस्या है?
1: रोग का समस्या आ जाता है।
0: तो रोग लगने से तो हम अभी जैसे देखते हैं ज्यादातर रानी खेत बीमारी है, वो ज्यादा फैलता है गांव सब में।
1: हाँ, रानी खेत ही ज्यादा फैलते हैं, और उसी के लिए उसी को ये दवाई करने के लिए हम बाजार से ले आते हैं।
0: तो मुर्गी पालन से आपको किस तरह का लाभ मिल रहा है?
1: लाभ तो
0: जी,
1: वो 2-3 महीने में बड़ा हो जाता है और 500-600 रुपये में बेच सकते हैं।
0: अच्छा, मुर्गी पालन जो किए हुए हैं, इनको आप चारा में क्या क्या देते हैं?
1: चारा में तो चावल ही देते हैं
0: जी,
1: और कुछ नहीं देते।
0: अच्छा, इसके अलावा और अन्य आप कुछ नहीं खिलाते हैं?
1: नहीं खिलाते हैं, अपने से वो घास खा लेते हैं
0: जी। आपको मुर्गी पालन और बकरी पालन से किस तरह का लाभ मिल रहा है?
1: मुर्गी पालन और बकरी पालन में बहुत तरह का लाभ मिलता है, जैसे कि बोदा भी रखते हैं, खसी को भी रखते हैं, और मुर्गी में सांडा भी और मुर्गी भी, खटली भी।
0: अच्छा,
1: तो जरूरत पड़ने पर जैसे परब वरब होता है तो ज्यादा दाम में
0: बेचते हैं उसका।
1: हाँ, बेचते हैं
0: जी। जी, बहुत ही अच्छा है। मुर्गी पालन, बकरी पालन के अलावा और आप अन्य खेती बाड़ी का कार्य भी करते हैं?
1: हाँ, करते हैं, और धान और जैसे सब्जी भी कभी कभी करते हैं।
0: अच्छा, तो धान तो अभी लगभग खत्म ही हो गया है, खलियानों का कार्य भी समाप्त हो गया, तो खेती बाड़ी में आप किस तरह के मतलब खेती बाड़ी का कार्य करते हैं?
1: खेती बाड़ी तो जैसे कि 1-2 साल खाने के ही हम साल में करते हैं, उसके बाद दुकान भी हल्का किए हैं।
0: अच्छा,
1: दुकान, राशन दुकान।
0: अच्छा, वो भी किए हुए हैं। तो ये जो खेती बाड़ी करते हैं साथ साथ, तो इसमें आपकी सिंचाई की क्या सुविधा है?
1: सिंचाई के लिए मेरा तालाब है सामने।
0: अच्छा,
1: आप तालाब में सिंचाई ये खेती बाड़ी?
0: तो आपका निजी तालाब है या सरकारी तालाब है?
1: निजी तालाब है।
0: अच्छा, आपका निजी तालाब है और इसके माध्यम से ही आप खेती करते हैं?
1: हाँ, इसके माध्यम से।
0: जी जी, और इसके साथ ही आप मुर्गी पालन और बकरी पालन किए हुए हैं, तो इस तालाब में क्या मछली पालन का कार्य भी किए हैं?
1: मछली तो पालन किया है, उतना उसमें फैसिलिटी हमको नहीं मिल रहा है।
0: अच्छा, किसी तरह की इसमें भी सरकारी योजना का लाभ लिए हैं मछली पालन के लिए?
1: उसमें नहीं लिए हैं।
0: अच्छा,
1: तो जैसे कि तालाब सही नहीं खुदा हुआ तो पत्थर तो रहे ज्यादा
0: जी,
1: तो मछली पकड़ने में थोड़ा असुविधा हुआ।
0: अच्छा, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: किसान भाइयों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बकरी पालन और मुर्गी पालन में बहुत सी सुविधा मिलता है और

0: दूध पैदा भी होता है, इसलिए किसान भाइयों इससे इस पालन के लिए हम लोग भी प्रेरित करें। और ये मुर्गी और बतख, मुर्गी और बकरी का पालन में और जल्दी भी बड़ा हो जाता है।
1: बिल्कुल, ये तो सही बात है कि कम समय में लाभ ही लाभ है।
0: कम समय में लाभ ही लाभ मिलता है
1: जी। मुर्गी और बकरी पालन से होने वाले लाभ, इस विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए हम आपका पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोहार।
2: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही है, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
3: अजमत है नवा संदेश और संदेश बना तो बढ़ाते हैं बकरी पालन से लाभ विषय दिक्कत है ना कि ले थे गुरुचरण मुन रीति किन नियत हम दिला कार्यक्रम बना से बोला है और कार्यक्रम मुझे रब रसकिन उन्होंने नवा संथाली लोग कीते सूर्य मुर्मू और सावतेन को सपड़ाते हैं।

0: जैसे वही हम इसी को नेता मोरस के कंथ नवा संथाली लोक गीते सुरे मुर्मू आर सावते को सबरा होते हैं निये सेरिन सावते के तेहिया चासपा सखड़ा किसान वाणी नोड़े के चेदो कना मा तेहिन लेगत अलिंग ठाकुर चंद्र मुर्मू
1: और आशा मणिगो को दीजिए विदा जोहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में संध्या के 6 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचारों का। तो आइए मुख्य समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का कार्य करेंगे। श्री कुमार ने कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने नहीं दिया जाएगा। राज्य में पेसा झारखंड नियमावली 2025 को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए रांची में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पेसा नियमावली में ग्राम सभाओं को और अधिकार मिलेंगे। उन्होंने हर जिले में पेसा कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। इस वर्ष की यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। प्रत्येक जत्थे में 50-50 यात्री रहेंगे। देवघर के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने आज सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी काम अधूरा ना रहे और हर योजना लाभुकों तक अवश्य पहुंचे। इसके लिए उपायुक्त ने जिला प्रखंड और पंचायत स्तर के सभी अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने की हिदायत दी। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों के अनुसार जहर खाने के कारण तबियत खराब होने पर पीड़ित को बेहतर इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज में लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके परिजन की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचार। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं बांग्ला कार्यक्रम सात रंग।

0: पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम संथाली अखड़ा।

0: ᱫᱷᱟᱹᱱᱟᱹᱭ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱛᱮ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱭᱟ
1: राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गयी है।
3: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले मगे नहर में ना आ बले नुकन परिस्थिति रे बले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे मैं कहा कि हम बले रुड़ तो बन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो वो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बंदा है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई का नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रनबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए
6: नितुम बुरा मिसिंग काम सोए अनिता थामसा भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में नहीं है यापा में रियो तपा में रियो वाह बेटा निका
7: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने में बुरी ने बागिया तो कि दुना से आरती कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे बुरुरम गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुकाको काको मेल में
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिटा हुरेन का अली आया न तुम ते ना आप ही लेता ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिन्हित जारी।
2: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱢᱤᱛᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ।
3: ᱢᱤᱛᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱟᱹᱛᱩ ᱥᱟᱸᱡᱟᱲ, ᱵᱞᱚᱠ ᱫᱚ ᱨᱟᱡᱽᱱᱚᱜᱚᱨ, ᱡᱤᱞᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱟᱹᱭᱠᱮᱞᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚᱣᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱞᱤᱧ। ᱵᱚᱨᱛᱚᱢᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱚ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱠᱮᱥᱟᱲ ᱜᱟᱹᱰᱭᱟ ᱨᱮ ᱥᱤᱪᱪᱷᱤᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟᱞᱤᱧ। ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱨᱛᱚᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱸᱫᱟᱥᱟᱹᱭ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱵᱟᱥᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ। ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱞᱤᱧ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ। ᱵᱚᱨᱛᱚᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱮ ᱵᱟᱞᱵᱟᱞᱟᱣ ᱞᱚᱦᱚᱫ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱩᱛᱷᱤ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱮᱥ ᱚᱠᱚᱡ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱚᱰᱳᱠ ᱡᱩᱡ ᱫᱟᱜ ᱵᱳᱛᱚᱞ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱰᱳᱠᱚᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ, ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱰᱳᱠᱚᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱚᱦᱚᱫ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ, ᱜᱟᱢᱪᱷᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱛᱚᱢ ᱫᱚ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱨᱟᱜᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ। ᱜᱟᱢᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱞᱚᱦᱚᱫ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱫᱚ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ। ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱞᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱫᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱢᱵᱩ ᱫᱟᱜ, ᱪᱤᱱᱤ ᱫᱟᱜ, ᱵᱮᱨᱮᱞ ᱩᱞ ᱥᱚᱨᱵᱚᱛ, ᱞᱟᱹᱥᱤ, ᱳᱟᱨᱮᱥ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱟᱠᱤ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ। ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱟᱨᱵᱩᱡ, ᱛᱟᱦᱮᱨ, ᱱᱤᱢᱵᱩ, ᱥᱟᱱᱛᱨᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ। ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱴᱷᱟᱶ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ। ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱟᱡᱟᱨ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱟᱞᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱮᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ। ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱰᱟᱝᱨᱤ, ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱩᱢᱩᱞ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱥᱤᱛᱟᱹ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ। ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱞᱯᱤᱧ ᱵᱚᱱᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱷᱤᱲᱠᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ। ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱫᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ? ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ, ᱥᱮᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱡᱟᱱᱣᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮ ᱛᱤᱥᱚ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱵᱟᱝ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ। ᱥᱤᱧ ᱵᱮᱲᱟ ᱫᱚ 12 ᱵᱟᱡᱮ ᱠᱷᱚᱱ 3 ᱵᱟᱡᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱚᱰᱳᱠ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ। ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱟᱨ ᱜᱟᱲᱦᱟ ᱨᱚᱝᱟᱜ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ। ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱤᱲᱠᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱷᱤᱡ ᱠᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱟᱹᱨᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱩ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ। ᱞᱩ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ? ᱵᱮᱨᱮᱞ ᱩᱞ ᱨᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱱᱟᱲᱠᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ। ᱩᱢᱩᱞ ᱨᱮ ᱞᱩ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱢᱩᱞ ᱨᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱫᱟ

0: ᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱚᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱫ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱩᱱᱤᱜᱮ ᱩᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱᱛᱮ ᱳᱟᱨᱮᱥ, ᱱᱤᱢᱵᱩ ᱫᱟᱜ, ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱜᱟᱨ ᱩᱞᱟᱹ ᱭᱟ ᱯᱷᱤᱨ ᱵᱮᱦᱚᱸᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱮᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱮᱠ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱨ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱛᱷ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱮ ᱤᱫᱤ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱳᱟᱨᱮᱥ ᱟᱸᱜᱟᱱᱵᱟᱲᱤ ᱥᱮᱵᱤᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱜᱟᱨ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱤᱞᱟᱹᱥ ᱛᱮ ᱜᱚᱡ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱮᱰᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱯᱮ ᱪᱟᱢᱚᱪ ᱪᱤᱱᱤ, ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱢᱚᱪ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱜᱷᱚᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱳᱟᱨᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾ ᱟᱜᱟᱨ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱫᱤᱱ ᱯᱟᱛᱞᱟ ᱫᱟᱜ ᱥᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱚᱞᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱚᱵ ᱛᱚᱠ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱵᱚ ᱤᱫᱤᱭᱮᱭᱟ, ᱛᱚᱵ ᱛᱚᱠ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱳᱟᱨᱮᱥ ᱜᱷᱳᱞ ᱛᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱛᱮᱵᱚ ᱮᱢᱟᱭ ᱢᱟ ᱾ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ, ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱛᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱯᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱮᱥ ᱛᱮ ᱡᱟᱭ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱢᱤᱛᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ
2: सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ᱟᱵᱚ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱚᱼᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱚᱼᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱚᱼᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱚᱼᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱚᱼᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱚᱼᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱚᱼᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱚᱼᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱚᱼᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱚᱼᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱚᱼᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱚᱼᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱚᱼᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱚᱼᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ

आप सुन रहे थे कार्यक्रम संथाली अखड़ा। ये आकाशवाणी का चायपासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:55 हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र। कृपया प्रतीक्षा करें।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सुधार के लिए लागू किया गया झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में कहा, एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटे। राज्य में पेसा नियमावली 2025 को बेहतर ढंग से लागू कराने के लिए आयोजित की गई दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला। थाईलैंड में आयोजित एयरगन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता की गोल्ड मेडलिस्ट जामताड़ा के देवासी हेमब्रम को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया सम्मानित। और जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए की गई भारतीय टीम की घोषणा। झारखंड के दो खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लागू किया गया है।
2: जब से इस राज्य में काम देख रहे हैं, हायर एजुकेशन के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते थे। ये कहते थे कि अब टू इंटर तो पढ़ाई अच्छी है। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन में सम्मेलन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि झारखंड की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने एक महत्वपूर्ण अवसर है।
1: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का कार्य करेंगे। श्री कुमार ने कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने नहीं दिया जाएगा।
3: 30 जून से 29 जुलाई तक है, इसी पीरियड में किन किन वोटर का नाम अभी मतदाता सूची में है उनका एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगी, वो अपने सिग्नेचर करके वो प्रीवियस एसआईआर का डिटेल होगा मतलब उसका साथ में करेंगे, उसके लिए बीएलओ आपका सहयोग करेगी। नया वोटर 30 जून से ही एप्लीकेशन दे पाएंगे। किसी भी एक भी भारत नागरिक उनका 18 उम्र हो गया वो झारखंड में रहता है उनका नाम जरूर आएगी। उनके लिए हम लोग सभी जगह पर ईआरओ एईआरओ एडिशनल एईआरओ बीएलओ बीएलओ सुपरवाइजर वॉलंटियर्स आपका मदद करेंगे।
1: राज्य में पेसा झारखंड नियमावली 2025 को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए रांची में राज्य स्तरीय कार्य

0: इसके लिए सभी लोग लगे हुए।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। इस वर्ष की यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। प्रत्येक जत्थे में 50-50 यात्री रहेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग लगने की कई घटनाओं को गंभीरता से लिया गया। इस बैठक में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज का विस्तार करने और परिचालन सुरक्षा में सुधार करने पर भी जोर दिया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 25 नक्सलियों और JJMP के 2 उग्रवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 8 नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके खिलाफ 426 मामले दर्ज हैं। DGP तदाशा मिश्रा ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास और उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
2: मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं, उनका सभी का जो भी आवश्यकताएं है अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे।
1: कोल्हान के सारंडा में सक्रिय 25 से अधिक नक्सलियों के एक साथ समर्पण करने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य मुख्यधारा से भटके हुए लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना है।
3: आज सरकार की नजर, सरकार की आवाज पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और निश्चित रूप से सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि हर व्यक्ति सरकार के साथ जुड़े, कोई भी ना छूटे, और आज उसका परिणाम है कि लोग तेजी से मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं।
1: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज सांसद कालीचरण मुंडा के आवासीय कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद कालीचरण मुंडा और जिला प्रभारी चौतो उरांव विशेष रूप से उपस्थित थे। मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में इन दिनों तेज धूप और गर्मी के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य के 11 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है। इधर मौसम विभाग ने बोकारो, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। जामताड़ा की देवासी हेम्ब्रम ने थाईलैंड में आयोजित एयरगन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज उन्हें विधानसभा में सम्मानित करते हुए कहा कि प्रतिभा कभी गरीब और अमीर में फर्क नहीं करती।
4: हम
0: हमारी झारखंड की बेटी, देश की बेटी देवासी थाईलैंड में जाकर के गोल्ड मेडल लेकर के आया है, ये हम सबों के लिए एक गौरव का क्षण है। जब मेधा कोई गरीब और अमीर को पहचान के नहीं होता है, आज भी वैसे मेधावी हर

0: उपस्थित सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है समाज को, सरकार को, सारे लोगों को ऐसे मेधा को ढूंढ निकालना।
1: हॉकी इंडिया ने 29 मई से 6 जून तक जापान के काकामिगाहारा में होने वाले पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में झारखंड के दो खिलाड़ी आशीष तानीपुरति और प्रेमचंद सोई को जगह मिली है। उनके चयन पर हॉकी झारखंड और खेल विभाग ने पूरी टीम को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सुधार के लिए लागू किया गया झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में कहा, एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटे। राज्य में पेशा नियमावली 2025 को बेहतर ढंग से लागू कराने के लिए आयोजित की गई दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला। थाईलैंड में आयोजित एयरगन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता की गोल्ड मेडलिस्ट जामताड़ा की देवासी हेम्ब्रम को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया सम्मानित। और जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए की गई भारतीय टीम की घोषणा, झारखंड के दो खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अंक में आप सुनेंगे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता।
1: केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से करीब 107 करोड़ की लागत से हजारीबाग शहर की महत्वाकांक्षी परियोजना भारत माता चौक से लेकर सिंदूर बाईपास तक लगभग 9.5 किलोमीटर मुख्य सड़क का पूर्ण निर्माण किया जाएगा। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने बताया,
2: उसको भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और ये जो एरिया है आज पूरा हजारीबाग आप देखिएगा तो आकर के इसी से कनेक्ट रहता है कहीं ना कहीं पर, तो यहाँ से लेकर के नगवा तक में तो जितना बाईपास हुआ है इस फोर लेन से लेकर उस फोर लेन तक अभी किया जा रहा है 10 किलोमीटर का है और लगभग 100 करोड़ की ये जो है योजना है।
1: हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ में सड़क यातायात सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में जिला परिवहन पदाधिकारी बैजनाथ कामती बताते हैं,
3: पूरे देश में 600 जिलों में घूम घूम कर वहाँ के जो लोकल प्रशासन से मिलकर एक अभियान चलाते हैं, उसी तत्वावधान में ये लोग आज शनिवार से ही यहाँ पर है। डिस्ट्रिक्ट मोड़ पर ये कार्यक्रम था, उसी में हमारा परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के सहयोग से एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सड़क सुरक्षा जो हेलमेट है, सीट बेल्ट है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, कैसे रोड पर चले, क्या नियमों का पालन करें, यही सब की जानकारी लोगों को दी गई और फाइन भी काटा गया। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि पिछले 2-3 सालों में जहाँ लोग जीरो हेलमेट पहनते थे अब परिवर्तन आ रहा है, आने वाले समय में 100% लोग हेलमेट जरूर पहने।
1: एशिया का सबसे गर्म बरकट्ठा सूर्यकुंड को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने क्षेत्र भ्रमण किया है। क्षेत्र भ्रमण करने के बाद हजारीबाग उपायुक्त हेमंत सती ने बताया,
4: सूरज कुंड को अभी जिस जिला परिषद के द्वारा उसको संचालन किया जा रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है जिसको जिसमें लगभग लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं, तो स्थानीय लोगों के साथ और वहाँ के मुखिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी के साथ मिलकर के ये कुछ बातें तय हुई है जिसमें हम लोगों को वहाँ पर बहुत सारे कार्यों को कराया जाना है ताकि और पर्यटक आ सके और पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर वो अपनी जगह बना पाए। इसके अलावा पाताल लोक धाम का भी भ्रमण किया गया। यहाँ पर किसी भी विषम परिस्थिति में भी यहाँ पर 24/7 बहुत ही अच्छा पानी आता है कि सभी लोग यहाँ से पानी पीते हैं और इस पानी की अपनी एक ऐतिहासिक मान्यता है। हम लोगों के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस चीज़ को भी संज्ञान में लाया गया है और जो बेसिक चीज़ें हैं उन बेसिक चीज़ों को यहाँ पर ठीक कराया जाएगा, स्नान घाट बनाया जाएगा, इसके अलावा चेंजिंग रूम बनाया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन की खपत कम करने के आह्वान का देश में तत्काल और व्यापक असर दिखा है। हजारीबाग नगर निगम के महापौर अरविंद राणा चार पहिया वाहन छोड़कर मोटरसाइकिल से कार्यालय आना जाना शुरू किए हैं। इनका कहना है
5: कि जहां तक हो सके हम लोगों को बचत करनी चाहिए, विशेषकर वैसे संस्थानों पर जो हम आयात करते हैं पेट्रोल, सोना आदि आदि। तो मैंने तय किया है कि जहां कहीं संभव हो अपने वाहन से चलूं, हमारे सुरक्षा कर्मी हमारे साथ चलते हैं। मैं क्षेत्र भ्रमण भी आज से बाइक से ही कर रहा हूँ और काले हम इसी से आ रहे हैं। राष्ट्र बचाने के लिए तेल नहीं, राष्ट्र रहेगा तो मेरा हम रहेंगे, हमारा समाज रहेगा, मैं महापौर रहूंगा। तो राष्ट्र महत्वपूर्ण है और राष्ट्र उत्थान के लिए, राष्ट्र के लिए हम सबों को, हर भारतवासियों को राष्ट्र प्रथम मानकर काम करना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। जब भी इन्होंने देश हित में लोगों से आह्वान किया तो लोगों ने उनकी अपील का स्वागत किया है। कुछ ऐसा ही नजारा हजारीबाग में देखने को मिल रहा है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
0: अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:16 हो चुके हैं। वक्त है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम आपके फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार जोहार। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और देखते हैं कि हमारे किन किन श्रोताओं ने हमें आज अपनी फरमाइश खत के माध्यम से हमें भेजी। तो आइए लेते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत जो कि हमें लिखा है मचगाँव से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं अहमद हुसैन, शाह हुसैन, मज़हर हुसैन, रहमत अली अब्दुल्ला, आजम भाई, बिरजी गोप और सबा अहमद। इनकी फरमाइश है फिल्म कुली नंबर 1 से ये गीत या आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, और इसी गीत को सुनना चाह रेलवे रोड गंजू डबरा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख और अब्दुल सत्तार अंसारी ने, सिंधर पार्क विरमगाम के अजित प्रेमिला, भावे सनी भावसार, हेतल कृष्णा और जैमिन भावसार की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला के रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत, गुरशब्द और राहुल ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से, और खत लिखने वाले श्रोता हैं अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ के विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और थनज आरु साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, जगदीश सोनी, टावर चौक गुमला से एस एम जावेद, सगुप्ता अंजुम और जेनिस जौहरी, यमुनानगर हिरन छप्पर के हरियाणा के जयपाल धीमान, यशपाल धीमान और अर्जुन धीमान ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे कार्यक्रम के ये अगले श्रोता हैं राम भट्टा, संजय मैदान रोड रायगढ़ से, और रायगढ़ से रोहित लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी, अंश लक्ष्मी, रानी दीपा लक्ष्मी, सुनीता लक्ष्मी और लक्ष्मी लक्ष्मी। सहावर टाउन का जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से अपनी फरमाइश हमें भेजी योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक ने। बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनीकर और धीरज सवासेरी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। आदर्श नगर मलोट के राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है शिवाजी चौक राजम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रेस श्रीवास्तव ने, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव ने भी हमें खत लिखा है। गांव चौहलता बागपत से अपनी फरमाइश हमें भेजी संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल ने। बड़विल उड़ीसा के सुरजीत भाटिया, प्रीतपाल कौर और जीत प्रीत ने भी फिल्म कुली नंबर 1 के इसी गीत के लिए हमें अपनी फरमाइश भेजी है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है मछली गोदाम कैंदीमुड़ा रायगढ़ से, और खत लिखने वाले श्रोता हैं पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती ओषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू सिंह, रितु सिंह और ऋषभ सिंह। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र के सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर, बड़सिंह की बुलढाणा से अमोल मानकर, सुभताई मानकर, श्लोक और दीपाली ने भी इसी गीत के लिए हमें अपनी फरमाइश भेजी है। रेलवे रोड रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी लोग। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमीला श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार, अशोक श्याम कुमार और दीपक श्याम कुमार की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। चायबासा से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं मोहम्मद सईम अख्तर, इकबाल भाई, लीलू खान और महमूद आलम। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब के विनोदपुरी, विपिन रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, रमापुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी और आर एसपुरी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से खत लिखने वाले श्रोता हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, चीर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत फिल्म कोली नंबर 1 से।

ताल कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत इसी फिल्म से। आवाजें हैं गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की, और इस गीत को सुनने के एक ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवांडकर, राही सरिता गवांडकर और प्रिंस एकांश गवांडकर, बदलापुर मुंबई के सिद्धांत गवांडकर, प्रणीता गवांडकर और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवांडकर, श्वेता सुमित गवांडकर और कुमारी ध्वनि गवांडकर और टुक टुक। वसुंधरा कॉलोनी सेंटूला चायबासा के भोला राम मधुर, मधुर लकड़ा, नतासा और बेबी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। बड़ी बाजार चायबासा से इसी गीत को सुनना चाहा विनोद कुमार पवन और श्रीमती मीना पवन ने। इचलकरण जी महाराष्ट्र से हमें कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत लिखा है। बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, आदित्य हजारे और मितालसु हजारे ने बोर्ड सैरानैला के प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। मेरी टोला चायबासा से इसी गीत को सुनना चाहा है विशाल कच्छप और दुलारी बिरुली ने। नांगलोई दिल्ली के मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्ढा की ये अगली फरमाइश हमें मिली इसी फिल्म से के गीत को सुनने के लिए। दादरी गेट भिवानी से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है ग्राम हाथनांग टोडांग टोला महाली साई से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं बीरबल महली, सरस्वती महली, सुमानती महली, फूलवती महली और सुमानती महली, शकुंतला महली और यशोदा महली। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक साजिद और बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश के आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद की ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। फिल्म ताल के इसी गीत के लिए हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी। अमला टोला चायबासा के गौरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। ग्राम बादुड़ी से मिला है ये कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं नारायण कुदादा, हेमा कुदादा, कैलाश कुदादा, सुषमा, पप्पू, प्रीति, विक्की और पुष्पा। पुरानी टोली जसपुर छत्तीसगढ़ के मालती नागदेव, कुमारी सोनाली नागदेव, मयंक नागदेव, अनिमेश नागदेव और अंसल नागदेव की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। आरती टाउन गोदनी नागपुर महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं अलजियर अब्राहम, ओजैनी अब्राहम, एलन अब्राहम, ग्लोरी अब्राहम, एलेक्स अब्राहम, जोसेफ रूफर्ट, अविनाश छत्रपाल, सिद्धार्थ गोंडानी, हीरामन सेडे और उनके साथी। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है महुलिया सोनवा झारखंड से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं राधामन, नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, वंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गितेश, अनु, तनु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो और मेन रोड सोनवा से ही गुरचरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, विनायक पांडे प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पाणी प्रधान और नीक पाणी प्रधान ने। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी की खास खास और खास आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म ताल से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस छोटे से विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें मिला है जरूट फरून महाराष्ट्र से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं बाबा साहेब वाड़ोते, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे और कार्तिकी युवराज। बस स्टैंड टाटा रोड चाईबासा से रमाकांत सिंह, अरविंद सिंह, पप्पू सिंह, उदित कुमार जायसवाल और विजय सिंह ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है बिलासपुर देवरी खुर्द से, और खत लिखने वाले श्रोता हैं संतोष तलरेजा, आरती अर्चना, सोनू तलरेजा, कुंवर सिंह, गुड्डू भाई और रामदास। बड़ा बाम्बो गोपालपुर से संतोषी महतो और जय कुमार महतो की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कुचाई बिदरी गांव के पी सोए, सरिता, दुर्गामती, रेशमी, राजकुमारी विशाल, मुन्ना सोए और सनी सोए की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। ग्राम सुराबेड़ा से हमें अपनी फरमाइश भेजी है बासिंग सरदार, धनी सरदार, कमल सिंह सरदार, सुखमती सरदार, रमेश, अंशु और बीरू सरदार ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म लम्हे का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर और सुरेश वाडिकर ने। इसी गीत को सुनना चाहा ग्राम सौंगा मंगरलोड धमतरी छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन ने। प्रयागराज से पीयूष प्रताप सिंह, स्नेहा सिंह, फट्टन सिंह और शिवनाथ सिंह की फरमाइश भी हमें इसी प्राप्त हुई। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनना चाहा है कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, सोएब खान, मुस्तफ़ा खान, रऊफ भाई और साहिद भाई ने। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हैं और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी फरमाइशी गीत फिल्म लम्हे से।

स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम रजनीगंधा में। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं आज

के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत जो कि हमें लिखा है कासम कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं यूनुस खत्री, शफी खत्री, त्रिश खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, कासिफ आसिम और इरफान मीना, गांव कैरो पंजाब से गुरुशन लाल चलोत्रा, सुनीता, सम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनंत और गुरशब्द की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। फाजिलका पंजाब से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवांची खेड़ा, सालनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और खेड़ा परिवार के सभी लोग। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है कोटडा बहादुर जिला मंदसौर से, और खत लिखने वाले श्रोता हैं नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पू लाल और वीके डांगी, पुरानी भिलाई, तीन चरौदा, छत्तीसगढ़ के नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीउद्दीन सिद्दीकी, जीसान अहमद सिद्दीकी, सैनवाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार के सभी लोगों की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है बक्सर बिहार से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता है सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और आसमान आज अंसारी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। चमन पार्क दिल्ली से खत लिखने वाले श्रोता हैं सोनम और आतिबा, और सारिमपुर बक्सर के राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। सनी इनकलैब मोहाली के बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म खाकी का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है गायक कलाकार अर्नब चक्रवर्ती ने, और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं अलीका डब्बावली से बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी, शास्त्री नगर बीड शहर के किशन सबकाल, आशा सबकाल, दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और परभणी से सी आर कुलकर्णी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। मलोट कैंप पंजाब से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है धर्मपाल सिंह, वीर सिंह लाठी, किशन लखविंदर संधु, महावीर संधु और गुरुचरण ग्रोवर, भाटापाड़ा के सोहन जोशी, हरविंदर चावला और पुनेंद्र लहरी ने भी इसी गीत के लिए हमें अपनी फरमाइश भेजी है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, और खत लिखने वाले श्रोता हैं अक्रम हुसैन, इसरत अक्रम, रुबीना वसीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, मैराना

ना गोप, अमित, अंकित, अभिषेक, आशीष गोप, सुमित गोप, अनामिका गोप, सुनीता, गीता, रीता, सुलेखा, आराध्या, माहिर, खुशी और राहुल गोप ने चितलवाड़ी अंगोला से अमोल इंगले, सर्वेश इंगले, अर्चना इंगले, अधरा इंगले और इंगले परिवार के सभी लोगों की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। तो इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हुए ये आज्ञा आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म खाकी से आवाज़ गायक कलाकार अर्णव चक्रवर्ती की। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

किस्मत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत हमने लिया है इसी फिल्म से, और आवाज़ें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं बड़ा बम्बू सपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला, श्यामदेव नायक और सीमा, ग्राम गेलिया लोहार से कोमल बेसरा, बसंती, रमेश बेसरा, अनु, पूजा बनमाली और सिद्ध कुमारी की फरमाइश भी हमें मिली। लक्षणपुर से जीवन लाल रजक, सरोजनी रजक, रामजी साहू, बाबा कुटी, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और भटगांव बलौदा बाजार से राम दुलार साहू और नीलिमा साहू की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई के नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत्म में मिला है बठिंडा रोड डबावली से, और खत लिखने वाले श्रोता है राजू नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क साजापुर के मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रीक्षित, शशिकांत, रिया रीत, स्वीटी सागर, अंजुरी अंशु, रीतिका, नीरज, रिचा, चितरंजन, उमेश, सरोज, रेखा, ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सभी लोगों की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। बागपत यूपी से इसी गीत को सुनना चाहा एहसान अली ने। लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के सफलता हरसीता, रामेश्वर, कान्हा, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागड़ी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कुचाई तोड़ंगी दो के मुकेश महतो, विजय महतो, दिलीप महतो, सुरेशमणि महतो, सुमन महतो और रविंद्र मोहन ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, और खत लिखने वाले श्रोता हैं हरदेव मीका, बलविंदर विरग, जितेक विरग और मीका विरग, मोपका भाटापाड़ा के भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित साहू की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। सेक्टर 67 चंडीगढ़ से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप और अनिल शर्मा, कालका से सुभचंद बजाज और करनाल से जग्गी दुआ की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। जमशेदपुर से इसी गीत को सुनना चाहा है अरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हैं और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत गायक कलाकार उदित नारायण और साधना सरगम के स्वरों में फिल्म किस्मत से।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ईमानदार से। आवाज़ है गायक कलाकार सुरेश वाडेकर और आशा भोसले की, और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं जामटी वरुण अमरावती महाराष्ट्र के मुकेश दिनकल कासलेकर और विमल विशाखा कासलेकर। इसी गीत के लिए हमें कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत मिला है तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहत से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अशरत तड़वी, आरिस अरसलान और यूनुस तड़वी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ जिला बुरहानपुर से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं मुसरफ तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमिन तड़वी, तैमूर तड़वी और तड़वी परिवार के सभी लोग। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गत थमीसी गीत के लिए मिला पटेल नगर मलोट पंजाब से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया। तुरी टोला चाहेबासा के मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, संगीता देवी, खुशी कुमारी, अर्पिता कुमारी, सुमित ठाकुर, लाडो और भोला रजक की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। ग्राम पैजनिया तहसील को जिला जालौन उत्तर प्रदेश के सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक और आराध्या चंसौलिया की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। एकता कॉलोनी रोहतक से लिखा है हमें कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। अनारकली बाजार चकराओं के सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, काव्या और जयपाल यादव की फरमाइश भी फिल्म ईमानदार का ये गीत है। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं देवशंकर दामोरिया, अजय, रोशनी, पूजा, तुषार, प्रभा देवी।

तामुरिया की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है तीव्रता डबरी पाड़ा छत्तीसगढ़ से, और खत लिखने वाले श्रोता हैं मृदे महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया कुमार मरकाम, जागेंद्र कुमार मरकाम, गजेंद्र प्रताप मरकाम, सुरेंद्र कुमार मरकाम, मोहन सिंह मरकाम और मनमोहन सिंह मरकाम ने। चंदा रेडियो श्रोता चंग चंदा चौक अंधरा ठाड़ी मधुबनी बिहार से मिला है हमें कार्यक्रम का यह अगला फरमाइशी खत, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं सुविकांजा सज्जन, हेमलता सज्जन, मनोज सज्जन, लक्की सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक सज्जन और मास्टर एस के सज्जन ने। इसी गीत के लिए कार्यक्रम का यह अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत, मनमिंद्र पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया ने। ग्राम चांडिल हारूडी से तुलसीदास महतो, मनोरमा, कल्पना महतो, दीनबंधु महतो और मनमोहनी महतो की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। खेड़ियाघर प्रखंड मझारी से कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है और खत लिखा है बसंत बेंगुरा, सुलोचना बेंगुरा, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झिम्पी कुमारी और जयमनी और जयंती ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म ईमानदार से।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा नेहर में बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोर आए को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी का बारे हत्तो तो का तो घर आए ने हमरे घर बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए है
5: ये तुम लोग बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर मिनाया यापा मेरे तपा मेरे वा बेटा मिटका
6: अन्य तुम दो बुम्बई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा दो पटन पटन तुम कितना ही कोड़ा मैंने मैं उड़ी ने बागिया तो किन्हें दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तमे बुरुलम कोई यहाँ तो जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग सी जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए 8700014242।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
10: इस छोटे से विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम रजनीगंधा में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइश खत, जो कि हमें लिखा है खरसावा गांव दलाई किला से। और खत लिखने वाले श्रोता हैं लक्ष्मण सोए, आयुष सोए, सोनू हरिजन, गीता सोए, सरिता सोए, सारिका सोए, हारिका सोए, तनुजा सोए, विमी सोए, मनीषा सोए, शीतल सोए और सिनेमाए सोए। मॉडल टाउन पानीपत के संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा, आनिया, नेहा सागर गुंबर, हिमांशु गुगलानी, इम्बू कुरैसी और सुधीर नूतन की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से, और खत लिखने वाले श्रोता है नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिल रहा है ग्राम उघड़िया बड़ा बाम्बू से, और खत लिखने वाले श्रोता है नायडू महतो, उषा महतो, प्रियो महतो, डोली महतो, तरुण महतो, पंकज महतो, राहुल बोद्रा और अर्जुन बोद्रा और रवि बोद्रा। आमा खोंडरा रेंगा खार के राजेंद्र कृष्ण नेताम, देवी संदीपा नेताम, चंद्रदीप दक्षप्रिया नेताम की फरमाइश भी फिल्म दो आंखें बारह हाथ के इस गीत के लिए है। बरका काना से इसी गीत को सुनना चाह अब्जालताज और साहिन सुल्ताना ने। मुंबई से महेंद्र मोदी और राजा बाबू की फरमाइश भी इसी गीत के लिए मिली। छोटा निमड़ी चायबासा से बाबू राम, शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी और रोहन कुमार की फरमाइश भी इसी गीत के लिए मिली है। खरसवापति साई से इसी गीत को सुनना चाह शुक्रा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक ने। सोनवा गांव पोड़ाहाट के मिथुन नायक, मुकेश नायक, राकेश नायक, मुखरू आचार और सुखराम नायक ने भी हमें खत लिखा है। छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दतरंगी से कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखने वाले श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छाविंद्र वर्मा ने। लालपुर मारो के कीर्ति कुमार ध्रुव, सतीश विनय ध्रुव, निम्मी पम्मी ध्रुव और रितेंद्र कुमार ध्रुव की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और खत लिखने वाले श्रोता हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार। सरायकेला पाड़ापुर दिशावली ग्राम पहाड़पुर से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, और हमें खत लिखा है शिवाजी मुंडरी, सुरामणि मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, हेमंत मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरोबो केस, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सेवना बापू और एफएम शिवा मुंडरी ने। पाकुड़ झारखंड से उत्तम भगत और यशोतासु की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। बड़ी बाजार चायबासा के मौजम बिहारी, समीमा खानम, जिम्मी बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी और नबीहा ने भी हमें खत लिखा है। लुधियाना पंजाब के अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिभा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद के वलीउल्ला फकीर, डब्लुल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर और बुलंदशहर से बद्रवली अंसारी, फर्जीवली अंसारी और फर्जीवली अंसारी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई।

बंसाई चायबासा से परमेश्वर कुमार, दयावंती देवी, नीलम कुमारी, रचना कुमारी, पंखुड़ी कुमारी, मीना कुमारी, शिवा खंडायत, शिवम खंडायत, सोनाली खंडायत और अमृता कुमार ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। गांव चांदपुर पोटका के संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, आयुष भगत, राजू बसंत कुमार भगत की फरमाइश भी हमें फिल्म दो आंखें बारह हाथ के इस गीत के लिए प्राप्त हुई। कॉलेज रोड घाटशिला से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी और संतोष आनंद। मोशाबनी के कमल भगत, रूपाली भगत, सनी, सोनू और अर्णव राज की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गत इसी गीत के लिए हमें मिला ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडली बुलंदशहर के मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन अब्बासी, सहनबाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान रजान और अबान अब्बासी का। बेरड़ी से हुकुम कर्मकार, सुनीता कर्मकार, हार्दिक कर्मकार, प्राची कर्मकार और तनु कर्मकार ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव दास और कीर्ति भानु की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। ग्राम पोंडा काटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती सुरेन, सुहानी देवी, संजय सुरेन, पांतुर बागीरा, डोली बांकीरा और रघुनाथ चरहट ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष। दौलतबाद मुरादाबाद के जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। डब्बावली हरियाणा के जेके बाकोलिया, श्रीमती सुनीता बाकोलिया, संजय अनिल और मीनू बाकोलिया की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म दो आंखें बारह हाथ से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार कुमार सानू और अलका याग्निक की। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

श्रोताओं, यदि आप भी अपनी पसंद का कोई गीत हमारे जरिए इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं तो हमें खत अवश्य लिख भेजें। खत लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम रजनीगंधा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चायबासा। चायबासा का पिन कोड नंबर है 833201। खत में आप अपने पसंद के गीत के साथ ही साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य ही हमें साफ सुंदर अक्षरों में लिख भेजें। और हाँ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये लिखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने खत लिखते रहें और बढ़ाते रहें हमारी प्रेरणा, ताकि हम आपके लिए हर दिन अच्छे से अच्छे कार्यक्रम को पेश कर सकें। तो श्रोताओं, इसी के साथ ही अब स्टूडियो की घड़ी भी ये इशारा कर रही है कि कार्यक्रम रजनीगंधा से विदा लेने का वक्त हो चला है। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी संगीता को विदा दें। नमस्कार, आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। यह आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
1: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
2: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

बिना स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वे को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन हुजमार्क कजल्स फ्रेड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खतरखा सप्लाई मौजूद है। मरकज ने इबोला से मुतासरा मुल्कों से आने वाले और वहां से गुजरकर आने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। भारत अफ्रीका फोरम समिट मुलतवी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल गर्मी की सख्त सूरत हाल से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद शराकतदार के तौर पर देख रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे पर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि यह दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का दौरा इस बात का मजहर है कि भारत आलमी मंजरनामे पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान 57 अहम माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का वादा शामिल है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर उनकी तौहीन-आमेज बयान के लिए उनकी नुक्ताचीनी की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत और अमरीका फितरी शराकतदार के तौर पर काम कर रहे हैं और कई शोबों में एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी इख्तिरात, इंतहाई दकीक नौयत के दिफा, डिजिटल डाटा मराकज, क्वांटम कंप्यूटिंग और तिब्बी आलात शामिल हैं। नई दिल्ली में अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सालाना लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक्तसादी मफादात के सबब मुस्तहकम हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत आलमी कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद फ्रेमवर्क मुहैया करता है और इसमें आला पैमाना, सलाहियत और मार्केट के मौके शामिल हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के सिलसिले में MSME के रोल को उजागर किया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने फील्ड अफसरान के साथ नई दिल्ली में आज एक आला सतह की सिक्योरिटी के जायजे से मुतालिक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान यह बात सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में आग लगने के कई वाकयात की इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि इसमें समाज दुश्मन अनासर शामिल थे। वजारत ने बताया कि इन वाकयात को इंतहाई संजीदगी से लिया गया है और रेलवे की तहफुजाती फोर्स पूरी सरगर्मी के साथ इसकी छानबीन कर रही है। टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में CCTV कवरेज को वसत देने और सिक्योरिटी कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। है कि भारत में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की भरपूर सप्लाई है और रिफाइनरीज मांग पूरा करने के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत का इस्तेमाल कर रही हैं। LPG की पैदावार में इजाफा हुआ है और रिफाइनरीज में रोजाना तकरीबन 46 से 47 हजार टन LPG तैयार की जा रही है। नई दिल्ली में मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बैन वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सप्लाई मुस्तहकम है और सभी पेट्रोल पंपों पर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है। लगभग 46 से 47 हजार टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: रसोई के मकसद के लिए LPG की सप्लाई मुस्तहकम है और पिछले 3 दिन में 1,34,00,000 घरेलू LPG सिलेंडर फराहम किए गए हैं। सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल ने मुतासरा मुल्कों से आने वाले या वहां से गुजरकर आने वाले मुसाफिरों के लिए इबोला बीमारी के मुतालिक एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक वो मुसाफिर जिन्होंने ज्यादा खतरे वाले मुल्कों, जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो,

0: युगांडा और जनूबी सूडान शामिल हैं, इनका सफर किया है और जिन्हें बुखार, सरदर्द, आसाब में जकड़न, बगैर किसी वजह के खून बहने और कह आने और निगलने में परेशानी का सामना है, तो उनसे जोर देकर कहा जाता है कि वो फौरन तिब्बी अमले से रुजू करें। एक रिपोर्ट।
1: हुकूमत ने कहा है कि तस्दीकशुदा इबोला मरीजों या मुश्तबा मरीजों से खून लेने के सबब बराह रास्त राबते में आए मुसाफिर इमिग्रेशन क्लियरेंस से कबल हवाई अड्डे की सेहत ऑफिसर या हेल्थ डेस्क से फौरन रुजू करें। हुकाम ने मजीद कहा है कि किसी मुसाफिर के अपनी आमद के 21 दिन के अंदर ऐसी किसी बीमारी के आसार पैदा होते हैं तो उसे फौरन तिब्बी मदद तलब करनी चाहिए और अपने पिछले सफर के मुतालिक हिफ्जान सेहत के अहलकारों को खबर देनी चाहिए। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो सेहत से मुतालिक बैन अक्वामी जाब्तों पर अमलावरी और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की गरज से सेहत जांच और अवामी सेहत के इकदाम के सिलसिले में ताउन करें। दिल्ली से दीपेंद्र और अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: आलमी सेहत तंजीम का कहना है कि 21 मई तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और युगांडा में इबोला की एक अनोखी किस्म बुंदी बोगियों से मुतालिक 650 मुश्तबा मामलात का पता चला है, जिसमें 144 अमवात भी शामिल हैं। इतवार को आलमी सेहत तंजीम ने इसे बैन अलाक्वामी तशवीश की एक अवामी सेहत इमरजेंसी करार दिया था, अलबत्ता उसने कहा था कि ये वबाई सतह पर नहीं है। सेहत की इस सूरत हाल के पेश नजर भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होना थे मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल आज ही भारतीय हुकूमत ने अफ्रीका में रहने वाले, सफर पर जाने वाले या अफ्रीकी मुल्कों से वापस आने वाले इबोला वायरस से मुतासर लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। अब तक भारत में किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि भारत ने ज़रई पैदावार में इजाफा करके गजा की फराहमी को यकीनी बनाने के अमल को मुस्तकम करने और लाखों की किसानों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाकर दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश किया है। रोम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गजा और ज़रई तंजीम FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजे जाने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि ये एजाज नए भारत के बढ़ते हुए वकार की एक अलामत है।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: चौथा भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख से 31 तारीख तक नई दिल्ली में मुनक़द होना था, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सेहत की सूरत हाल के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि भारत अफ्रीकी यूनियन के सदर नशीं और अफ्रीकी यूनियन कमीशन के दरमियान मुशावरत की गई, जिसमें समिट और उससे वाबस्ता सरगर्मियों को मुनक़द करने पर गौर खोज किया गया, जिसमें अफ्रीकी लीडरों और तरफेन की मुकम्मल शराकतदारी और शमूलियत को यकीनी बनाने की अहमियत का एतराफ़ किया गया। इस सलाह मशवरे के बाद दोनों फरीकैन ने इस बात से इत्तेफाक किया कि चौथा भारत अफ्रीकी फोरम समिट बाद की किसी तारीख पर तलब करना ज्यादा मुनासिब होगा। समिट और इससे वाबस्ता मीटिंगों की नई तारीख बाहमी मुशावरत से तय की जाएगी और जल्द ही इस सिलसिले में ऐलान किया जाएगा। भारत ने अफ्रीका के आवाम और वहां की सरकारों के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया है और कहा है कि वो अफ्रीका की CDC की क्यादत वाली कोशिशों में तआवुन के लिए तैयार है, जिनका मकसद सेहत की मौजूदा सूरतेहाल से निमटना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। भारत ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों, खुसूसन सरहद पार की दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुत्तहिदा आलमी कोशिशों पर जोर दिया है। नई दिल्ली में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए मगरबी खित्तों के खारिजी उमूर की वजारत के सेक्रेटरी CB George ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने और उनकी हिमायत करने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए MEA के सेक्रेटरी ने दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत करने और उनको पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया है। ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने दहशतगर्दी की माली एयानत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के

0: पूरा मध्य भाग में है, तो वहाँ बहुत रेड कलर का भी वार्निंग है, उसका आसपास समुद्र नहीं कुछ नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, उसमें ज्यादा ध्यान देना है। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगर ये देखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये एरिया में भी हमने ऑरेंज कलर भी दिए हुए हैं। देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये लगभग आने वाले दिन में रहेगा, कभी 5-6 दिन तक ये प्रभाव रहेगा। धीरे धीरे जैसा कि थोड़ा साउथ दक्षिण से थोड़ा सा वो घटता जाएगा, 4 दिन के बाद ना वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगले 3 दिन में काफी प्रभाव रहेगा इसी क्षेत्र में।
1: वैसे मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अब स्थानीय स्तर पर हाइपर लोकल फोरकास्टिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे हीट वेव जैसी परिस्थितियों से निपटने में लोगों को किस प्रकार सहायता मिल रही है?
0: हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है, हम क्या करना चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन फोरकास्ट देंगे, लोकलाइज फोरकास्ट देंगे, हाइपर लोकल फोरकास्ट देंगे। दिल्ली में क्या है, आज मान लीजिए 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो और जगह में 48 डिग्री भी हो रहा है, तो हाइपर लोकल में तापमान का नहीं, बाकी जो कभी कभी बहुत अचानक जो आपका ये भी हो जाता है कि थंडरस्टॉर्म होता है, बारिश बहुत हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ये सब हमको मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे, जिसमें कि हम ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन में शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब कि एक दिन के अंदर, आज ये शाम को 4 बजे के बाद किया होगा, 6 बजे के बाद किया होगा, शाम को ये बहुत थंडरस्टॉर्म आएगा, हैवी रेनफॉल होगा, ये हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है हम वही डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा काफी नया नया चीज हम इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन में भी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राडार लगा रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल मॉडल जो कि फोरकास्ट देता है उसको हमने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने AIML का टूल भी हम उसमें लगा के उस हाइपर लोकल फोरकास्ट को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं।
1: अगर शहरों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे श्रोताओं को?
0: अर्बन हीट आइलैंड, देखो ज्यादा का शहर में देखेंगे तो जो शहर का डेंस एरिया है, बीच वाला जो एरिया होगा, वहाँ बहुत सारे जो आपका कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे घर है, गाड़ी है, व्हीकल है, उसका भी टेम्परेचर में थोड़ा सा प्रभाव करता है। दूर थोड़ा चले जाएंगे तो थोड़ा सा गाँव जैसा होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा, तो आपको लगेगा कि सिटी के अंदर में एक हॉट पॉकेट बन गया, 2-4 डिग्री का ज्यादा होगा उसे बाहर से, तो ये इसके लिए हम बोलते हैं कि आइलैंड जैसा, आइलैंड जैसा कि बीच में आपका हीट आइलैंड, जैसे कि उसका 3-4 डिग्री ज्यादा बन जाएगा, और उसके लिए बहुत कारण है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपका शहरीकरण हो गया, बहुत में सिटी है, इंडस्ट्री है, आपका व्हीकल है, आपका AC है, तो इसके कारण थोड़ा सा सिटी के अंदर हमको 3-4 डिग्री कभी कभी ज्यादा मिलेगा, उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं।
1: तो ऐसी स्थिति में स्कूलों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, या फिर निर्माण स्थल जैसी जगह, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग बड़ी संख्या में कामकाज करते हैं, वहां पर हीट एक्शन प्लान बनाना कितना जरूरी है?
0: भारत के अधिकतम राज्यों में हीट का प्रभाव है, तो हीट एक्शन प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखा गया कि हीट एक्शन प्लान करते गुजरात साइड में पहला स्टार्ट हुआ, बहुत सारे स्टेट राज्य में है, तो वो हीट एक्शन प्लान के वजह से जो हीट वेव में जितना रिलेटेड डेथ हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हीट एक्शन प्लान में क्या होता है कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ रहता है, मेडिकल टीम आपके साथ रहते हैं, क्या करना है, देन आपका जो IMD की जो अर्ली वार्निंग दे रहे हैं वो उनके साथ रहेगा, तो उसके बाद उन्होंने प्लान के हिसाब में पहला प्री सीजन, पहला समर से पहले उनको क्या करना है तैयारी करेंगे, मल्टी इंस्टीट्यूशनल हो जाता है वो एक्शन प्लान, तो ये हीट एक्शन प्लान के तरफ अगर काम करेंगे तो हमारा जो हीट वेव रिलेटेड जो डेथ या बाकी जो सारे लॉसेस हो रहा है वो काफी कम हो रहा है भी, और हीट एक्शन प्लान का बहुत जरूरी है, ऑलरेडी बहुत सारे राज्य में ये हीट एक्शन प्लान ऑलरेडी इफेक्टिव है।
1: डॉक्टर पटनायक, किसानों की अगर बात करें तो अत्यधिक गर्मी का जो हीट वेव का टाइम होता है, एक तरह से उनके लिए दोहरी चुनौती है, खेतों में काम भी करना और अपने आप को भी संभालना है, कामकाज पर और फसलों पर भी असर पड़ सकता है, तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से उनके लिए विशेष तौर पर सलाह जारी की जाती है?
0: उनके लिए तो अभी पूरा अत्यधिक गर्मी टाइम में उनको जितना कम एक्सपोजर होना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट का, इतना वो करना चाहिए जो कि पार्टिकुलर टाइम होता है, या आपकी जो धूप में टाइम में मान लो 11 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे, इस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, सुबह सुबह काम जो अर्ली आवर्स है उसमें थोड़ा काम को देखना पड़ेगा, या शाम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक्सपोजर जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में आपको जितना भी होगा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर होते हैं वो, उनको काम करना ही पड़ता है, वो जाते हैं, लेकिन ये स्थिति में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट जो है उसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, कभी हम देख रहे हैं कि कई बार ये हमें सुनने में आता है कि तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया या इस रिकॉर्ड को पार कर गया, पिछले इतने वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर हम देखते हैं टेम्परेचर का, तो इसके पीछे स्थानीय मौसम की भूमिका होती है परिस्थितियों की, या फिर कोई वाह इफेक्ट की बात होती है जहाँ पर हम अल नीनो की भी चर्चा करते हैं कि उसका भी असर हो सकता है?
0: आपने बताया कि कुछ कुछ जगह रिकॉर्ड, तो हमारा टेम्परेचर होता है, मान लीजिए अगर एक स्टेशन को हमने फिक्स कर लिया, मान लो दिल्ली, दिल्ली का तो हर साल में

0: तो वो सेम टेम्परेचर नहीं रहेगा, या हर दिन में भी सेम टेम्परेचर, अगर मई महीना ले लीजिए तो पूरा 31 डेज अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर के कारण काल देखेंगे तो 7 दिन के बाद 4 डिग्री कम बढ़ जाएगा, 4 डिग्री कम, ये चेंजेस जो होता है एक सीजन के अंदर ये तो होता है। लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड में देखा जाएगा, मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री का टेम्परेचर से ज्यादा कितना दिन हो रहा है, तो पहले महीने में कम दिन 40 हो रहा था बहुत पहले, अभी 40 से ज्यादा बहुत दिन हो रहा है। तो इसके चलते चलते कभी कभी हमारा एक एक दिन में कुछ रिकॉर्ड पर नया क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हमको एक्सट्रीम रेट बोलते हैं, वो ऑलरेडी हर मंथ का, हर स्टेशन का हमारे पास मेंटेन रहता है कि अगर ये महीने में, ये हफ्ते में अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हम देखेंगे यस ये टेम्परेचर ये स्टेशन का सबसे अधिकतम अभी हो गया, तो ये एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि जैसे कि ऑब्जर्वेशन। दूसरा, आपने जो एलिनो बात किया, एलिनो का भी प्रभाव रहता है, एलिनो के कारण तो आपका मानसून के में भी ज्यादा प्रभाव रहता है, और एलिनो के कारण बारिश भी कम होता है, और थोड़ा हीट वेव का भी प्रभाव होता है एलिनो के कारण। बट वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि एलिनो एक दिन में ये नहीं है, एक सीजन में एलिनो हो रहा है, कभी कभी लास्ट करता है एक साल तक भी एलिनो रहता है। तो उसके चलते ये जो सीजन में है उसी सीजन में एलिनो का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टाइप का एलिनो के साथ हम लिंक कर सकते हैं। लेकिन जो डे टू डे जो एक्सट्रीम होता है वो बाकी लोकल फैक्टर के भी ऊपर निर्भर करता है।
1: मॉनसून का आपने जिक्र किया था, अब जो आने वाला मॉनसून है इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: मॉनसून का IMD फोरकास्ट देता है कि सीजन कैसा रहेगा, सीजन कैसा रहेगा, जो कि अप्रैल में हमने 13 तारीख अप्रैल को हमने ये इसके बारे में बताया कि एलिनो आ रहा है, एलिनो पहले बताया कि एलिनो जो है मानसून को थोड़ा सा खराब प्रभाव पकाता है, मतलब मानसून अच्छा नहीं होता जनरली अगर एलिनो होता है तो हमने जो अप्रैल में बताया कि एलिनो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, जून में वीक एलिनो हो जाएगा, जुलाई में मॉडरेट एलिनो हो जाएगा, अगस्त में भी मॉडरेट एलिनो होगा, उसके बाद सितंबर में मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एलिनो होगा, ये हमारा जो फोरकास्ट, उसके चलते हमने मानसून का भी थोड़ा रेनफॉल कम आंकलन किया है जो कि 92% जो दिया गया है। तो इसलिए एलिनो के चलते मानसून में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, और इसका जानकारी हमने पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सभी को 13 तारीख को दिया, हमने इसमें बताया है।
1: क्या मौसम विभाग ने ये अंदाजा लगाया कि किन इलाकों में बारिश कम रह सकती है या कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा हो सकती है इसके असर से?
0: जनरली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बता रहे हैं कि जिस स्पेस में कौन सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया ये सब सारा, तो वो भी मैप हम दिए हुए हैं। लेकिन जब एक जगह में एक साल में अगर बारिश थोड़ा सा खराब है, जिसको हम बिलो नॉर्मल, नॉर्मल से अगर कम बारिश हो रहा है, तो साधारणतः ये देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य भाग, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट में तो साउथ में तो कम होने का चांस, थोड़ा सा साउथ पेनिनसुला जो उसी का कुटपा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, ये जनरल पैटर्न है। पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा राज्य में कैसा होगा वो मैप में भी हमने दिए हुए हैं।
1: एक सवाल महत्वपूर्ण बड़ा ये बचता है कि आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये संदेश हो कि वो किस तरह से इन स्थितियों में, खासतौर पे हीट वेव की परिस्थितियों में, अपनी देखभाल कैसे करें जिससे वो सुरक्षित रह सकें।
0: हीट वेव के कारण हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। पहला तो एक सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सन रे को एक्सपोज जो जितना कम होगा इतना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना जरूरी ना हो बाहर का जाके काम ना करे पड़े, एंड पानी सफिशियंट पीना चाहिए, ये सबसे बड़ा मेडिसिन है कि आप पानी कंटिन्यूस पीते रहने, कहीं बाहर जाते हैं तो पानी अपने साथ में रहे, क्या क्या करोगे, एंड सनलाइट एक्सपोजर कम करना है, एंड आपका खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, किस टाइप का खाना खाएंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये जो साधारण ज्ञान है ये हम बताते हैं, और लेकिन ये लोग को करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर के कारण आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोई कोई हार्ट पेशेंट वीक फैले उनको ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो आपको सब प्रिकॉशन लेके आपको चलना पड़ेगा गर्मी के टाइम में।
1: मौसम विभाग से तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से जुड़े रह सकते हैं लोग?
0: मौसम विभाग तो हम सारे अपडेट करते रहते हैं, हम जो जो परिस्थिति है जो हर दिन क्या करते हैं, अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा, हर क्षेत्र में कैसा रहेगा, हर राज्य कैसा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसा रहेगा, और अगले 7 दिन तक हम बता रहे हैं। उसके बाद हमने अगर दिन में भी कोई चेंज हो रहा है कि जो नाउ कास्टिंग बोलते हैं, आज दिन में सुबह आज कितना होगा, शाम को कितना होगा, कोई कहां अगर क्लाउड फॉर्म होके अगर बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, इसका भी जानकारी हम दिन के अंदर देते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा बाकी मैकेनिज्म भी है, टीवी रेडियो उसमें भी आता है, तो आपको मौसम विभाग का जानकारी लेके आपको उसमें ध्यान देके आपको सही निर्णय लेके आपको अपने को बचाना है।
1: डॉक्टर पटनायक, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Country-wide.

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनहरी यादें। आज सुनहरी यादों की महफिल हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा के वो मधुर नगमे जो वक्त के साथ पुराने तो हुए मगर दिलों से कभी दूर नहीं हुए। कुछ गीत उम्र के मोहताज नहीं होते, वो हर

आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को, जो कि प्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:01 हो चुके हैं। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम महफिल सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आइए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम की ये पहली गजल फनकार जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के युगल स्वरों में।

ये गज़ल आप सुन रहे थे फनकार गुलाम अली के स्वर में। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गज़ल फनकार जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के युगल स्वरों में।

फनकार चर्चित सी और चित्रासी के युगल स्वरों में ये गजल आपने सुनी। आकाशवाणी चायपासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं गजलों के कार्यक्रम महफिल का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल फनकार गुलाम अली के स्वर में।

फ़नकार गुलाम अली के स्वर में गाई हुई इस गज़ल के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम महफिल अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिल।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है आज का अगला कार्यक्रम, फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। तो आइए करते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग की शुरुआत और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म किनारा से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की।

फिल्म किनारा के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म कोरा और काला से। आवाजें हैं गायक कलाकार मुकेश और लता मंगेशकर की।

सुहाग कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से। आवाजें हैं गायक कलाकार आशा भोसले और शशि कपूर की।

ये गीत श्रोताओं आपने सुना गायक कलाकार लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में फिल्म सरस्वती चंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर से गायक कलाकार लता मंगेशकर के ही स्वर में फिल्म आराधना से।

फिल्म आराधना के इस गीत के बाद श्रोताओं कार्यक्रम के आखिर में सुनवाते हैं फिल्म मंचली का ये गीत गायक कलाकार मुकेश के स्वर में।

गायक कलाकार मुकेश के स्वर में गाए हुए फिल्म मंजिली के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों के रंग। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश

0: की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।